मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 जून 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्य

0: कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन समूह स्वर में सुनते हैं। गोपी वल्लभ गोस्वामी का लिखा देशगान।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं गोस्वामी तुलसीकृत राम भजन, गायन स्वर अनुराधा पौंडवाल की।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं योगेश का लिखा भक्ति गीत, गायन स्वर सोनू निगम के हैं।

0: पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में गुरु वंदना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु, पद्मनाभ शर्मा के वाचन स्वर में। सुनते हैं भरोसा विषय का लेख।
1: जब हम सुबह उठते हैं तो बिना किसी डर के जमीन पर कदम रखते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि धरती हमारा बोझ संभाल लेगी। हम रात को आंखें मूंद कर सो जाते हैं इस भरोसे के साथ कि कल एक नया सवेरा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया से भरोसा शब्द गायब हो जाए तो क्या होगा? शायद जिंदगी पूरी तरह थम जाएगी। भरोसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सके, न ही ये कोई ऐसी गणितीय समीकरण है जिसे जबरन सिद्ध किया जा सके। भरोसा तो आत्मा की एक अदृश्य डोर है जो दो इंसानों को, दो विचारों को और पूरे समाज को आपस में जोड़कर रखती है। किसी ने सच्ची कहा है कि भरोसा हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता लेकिन जब ये न हो तो दम घुटने लगता है। जब एक छोटा बच्चा हवा में उछाला जाता है तो वह रोता नहीं बल्कि खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उछालने वाले हाथ उसे गिरने नहीं देंगे। यही मासूमियत और निष्कपट विश्वास असल में भरोसा है। भरोसे की सबसे बड़ी खूबी और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसे कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इसे गंवाने में सिर्फ एक पल, एक गलतफहमी या एक झूठ काफी होता है। ये बात उस समय की है जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के अभियान पर था। रास्ते में वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और सेना के बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज करने से डर रहे थे, क्योंकि अगर राजा को कुछ हो जाता तो उनकी जान चली जाती। ऐसे समय में सिकंदर के बचपन के मित्र और उनके सबसे भरोसेमंद राज वैद्य फिलिप आ गया है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी दवा तैयार कर रहा हूं जिससे सम्राट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस मुझे 3 दिन का समय चाहिए। दवा तैयार होने ही वाली थी तभी सिकंदर के सेनापति पारमेनियो का एक गुप्त पत्र सिकंदर के पास पहुंचा। उस पत्र में लिखा था, सम्राट सावधान रहें, आपके राजवैद्य फिलिप को दुश्मन राजा ने बहुत बड़ी रिश्वत दी है। वह दवा के बहाने आपको जहर देकर मारना चाहता है। सिकंदर ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराया और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। अगले दिन राजवैद्य फिलिप दवा का प्याला लेकर सिकंदर के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने वो प्याला सिकंदर की ओर बढ़ाया। सिकंदर ने एक हाथ से दवा का प्याला लिया और दूसरे हाथ से तकिए के नीचे छिपा वह गुप्त पत्र निकालकर फिलिप की ओर बढ़ा दिया। सिकंदर ने कहा, फिलिप इस पत्र को पढ़ो। जैसे ही फिलिप ने वह पत्र पढ़ा उसके पैर कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डर कर सिकंदर से कहा, सम्राट यह झूठ है, सरासर साजिश है, आप इस दवा को। फिलिप अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले सिकंदर ने फिलिप की आंखों में आंखें डाली और बिना एक पल गंवाए एक ही सांस में वह पूरी दवा पी गए। कक्ष में सन्नाटा छा गया, सब डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ घंटों में दवा ने असर दिखाया और सिकंदर का बुखार उतर गया, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए।

0: बाद में सिकंदर ने फिलिप से कहा, जब मैंने यह पत्र पढ़ा तो मुझे अपनी सेनापति की बात पर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बिताए बचपन और तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा था। अगर मैं दवा पीने से हिचकिचा जाता तो भले ही जहर मेरा कुछ न बिगाड़ता, लेकिन शक हमारे बरसों पुराने भरोसों को हमेशा के लिए मार देता। चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही मानसिक शांति के लिए किसी पर विश्वास करना जरूरी है। अगर हम हर समय हर किसी पर शक करेंगे तो हमारा मन एक अंतहीन युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। दूसरों पर भरोसा करने से भी पहले एक और सबसे जरूरी पायदान है, खुद पर भरोसा, यानी आपका आत्मविश्वास। अगर आपको खुद की काबिलियत पर, अपने इरादों पर और अपनी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी रिश्ते को नहीं संभाल सकते। जब पूरी दुनिया आप पर उंगली उठाए तब भी अगर आपके भीतर से आवाज़ आए कि मैं सही हूँ और मैं यह कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कमा ली है। भरोसा एक कांच के बर्तन जैसा होता है, एक बार इसमें दरार आ जाए तो यह फिर कभी पहले जैसा नहीं चमकता। आज के अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर कमाइए जो बंद आंखों से आप पर विश्वास कर सकें। किसी का भरोसा जीतने में भले ही वक्त लें, किसी का भरोसा तोड़ने का गुनाह कभी न करें। और अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया भी है तो दुनिया से विश्वास करना मत छोड़िए, क्योंकि एक इंसान के गलत होने से पूरी इंसानियत गलत नहीं हो जाती। तो आइए आज से अपने रिश्तों में थोड़ी और पारदर्शिता, थोड़ा और सच और ढेर सारा भरोसा घोलें।
1: पद्मनाभ शर्मा के वाचन सुर में आपने सुना भरोसा विषय का लेख। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन श्रीकांत पारगांवकर और रविन्द्र साठे के स्वर में, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड 103।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: आज के इस परिवेश में पर्यावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी सामान्य से कम वर्षा तो कभी अधिक, कभी ठंड तो कभी बहुत अधिक तापमान, देर से ठंड पड़ना, जल्दी गर्मी आ जाना इत्यादि बदलते परिवेश के मुख्य लक्षण हैं। ऐसी परिस्थिति में सब्जियों की खेती सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। खुले वातावरण में खेती करने पर फसल रोग, व्याधि, कीड़े मकोड़े, ठंड गर्मी, वर्षा तुषार, ओला जैसे अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार बदलते परिवेश में सब्जियों की खेती करना एक जटिल समस्या बनती जा रही है। परिणाम स्वरूप पैदावार कम होने से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, खीरा, खरबूजा, बैंगन इत्यादि की खेती बदलते पर्यावरण, बीमारी व कीड़ों से काफ़ी प्रभावित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सब्जियों की खेती नियंत्रित वातावरण में करना एक विकल्प बन सकता है। यहाँ नियंत्रित वातावरण से अभिप्राय है सब्जियों की खेती ऐसी दशा में करना जहां रोग, व्याधि, कीड़े मकोड़े, ठंड गर्मी, वर्षा, ओला, कोहरा इत्यादि से सब्जी फसल की सुरक्षा हो सके, या यूं कहा जाए कि पर्यावरण कारकों से सुरक्षा के लिए जहां हम सब्जियों की खेती करते हैं नियंत्रित वातावरण या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। व्याधियों से बचाव के लिए किसान भाई नित नई दवाओं और नए हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके प्रयोग से आज हम तरह तरह के जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और असमय ही काल के मुँह में समाते जा रहे हैं। उपरोक्त बचाव के लिए हम इन सब्जियों का आवश्यकता अनुसार वातावरण प्रदान करके अधिक पैदावार व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों जैसे ठंडा, गर्मी, वर्षा, बीमारी व कीड़ों का प्रकोप में सब्जियों की लाभप्रद खेती संभव है। गुणवत्ता युक्त सब्जियों के पैदावार से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, पूरे वर्ष भर सब्जियों की उपलब्धता समान रूप से संभव, बेमौसम खेती की अपार संभावनाएं, कीड़े व बीमारियों का समुचित नियंत्रण, लागत का सही उपयोग, खाद, बीज, दवा का समुचित प्रबंधन, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी छोटी जोत वाले कृषकों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। शहरी क्षेत्र के आसपास सिमटती भूमि में इस प्रकार की खेती की अपार संभावनाएं हैं। शिमला मिर्च की खेती करना तो पूर्वांचल में एक अभिशाप बनता जा रहा है, अतः शिमला मिर्च की खेती कम लागत से बने नेट हाउस में करें, आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के किसान भाई अर्ध नियंत्रित दशा में शिमला मिर्च के अलावा अनेकों सब्जियों की खेती करके मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती से दोगुना लाभ प्राप्त करने एवं सामान्य से एक एक माह पहले फलन प्राप्त करने के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज की बुआई थैलियों में तैयार करके पौध प्राप्त की जा सकती है। अधिक उत्पादन देने वाले और महंगी सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा इत्यादि की खेती जालीदार घर में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथ ही साथ जाड़े के दिनों में गर्मी के मौसम की सब्जियों जैसे तरबूजा, खरबूज, खीरा, लौकी, कुम्हड़ा, कद्दू इत्यादि बिना ऊर्जा खर्च किए, बिजली के बिना पैदा किया जा सकता है। सब्जियों की खेती के लिए नहीं बल्कि कई तरह के वातावरण नियंत्रक हैं। ग्रीन हाउस में आवश्यक वातावरण

0: जैसे तापमान, प्रकाश, तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि शत प्रतिशत पौधों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसमें टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, खरबूजा, बैंगन इत्यादि सब्जियों की खेती सुगमतापूर्वक की जाती है। पॉली हाउस में कूलर की तरह पैड व फैन पद्धति होता है, जिसमें सामान्य से 5 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मुख्य रूप से शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा इत्यादि की खेती की जा सकती है। टनल हाउस, टनल बड़ा, छोटा व मध्यम आकार के अलग अलग होते हैं। इसमें शरद ऋतु दिसंबर जनवरी माह में अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती हेतु पॉलीथीन की थैलियों में पौध तैयार किए जा सकते हैं। शरद ऋतु कद्दू वर्गीय सब्जियों, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन इत्यादि की खेती भी की जा सकती है। नेट हाउस के माध्यम से महीन जाली यानी 1 इंच में 40 धागे में सफ़ेद मक्खी तथा अन्य कीड़ों से नियंत्रण कर टमाटर, मिर्च व शिमला मिर्च, बैंगन, करेला इत्यादि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। छायादार घर के तहत तापमान नियंत्रित करने के लिए अप्रैल से सितंबर तक पौध नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। मल्च, ठंड के समय मिट्टी का तापमान पौधों के लिए बनाए सामान्य रखने तथा खरपतवार नियंत्रित करने एवं पानी की ह्रास क्षति को रोकने के लिए जमीन की सतह पर फसलों की जड़ों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है।
1: सब्जियों की लाभकारी खेती पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुन सकेंगे दिन के 10 बजे। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है शाम के 5 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि के 10:00। कार्यक्रम मन भवन आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8:00।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। फिल्मी और गैर फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और गर्भावस्था में आवश्यक है टीकाकरण और जांच विषयक चर्चा, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आईना क्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विधवाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विषयक बातचीत। सजीव हेलो किसानवाणी का प्रसारण समय है 7:30। आज के विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लीलाधर साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर। चर्चा के प्रमुख विषय होंगे उन्नत फसल उत्पादन हेतु नर्सरी प्रबंधन व पौध तैयार करने की तकनीक और प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकें और इसके विविध आयाम।

0: श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुन पाएंगे 5:30 पर। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे युवा सोच, क्रम चैंपियन और फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धं FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युद्विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्याञ्च उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति, यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृतनिर्माणस्य विषये 16,000-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च

0: दुखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16 25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंज नगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति, अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः। भारतस्य हज समित्या हज 27,000 कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्। नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति। FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य पाकिस्तान दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुंजन दास मानिकपुरी और साथियों के स्वर में सरगुजिया देवी गीत के साथ।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सादरी डोमकच गीत। गायक कलाकार हैं राजेश शिक्का और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल के आखिर में प्रस्तुत है सरगुजिया बायर गीत। गायक कलाकार हैं राम अचल राजवाड़े और साथी।

गायक कलाकार रामअचल राजवाड़े और साथियों के स्वर में सरगुजिया बायर गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमिक हनफी के लिखे कलाम के साथ, आवाज़ें उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं चंदन दास की आवाज में डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी गजल।

0: चंदन दास की आवाज में डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म ममता का गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत निर्देशन रोशन लाल नागरथ का।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म ममता का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: हेल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। नेत्र सहायक अधिकारी प्रोन्नति हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना जारी दिनांक 11 जून 2020 के प्रावधानों के तहत नेत्र सहायक अधिकारी ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट ऑफिसर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र MPHW पुरुष महिला एवं ड्रेसर वर्ग एक कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन सूची तथा अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। जारी प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने नेत्र सहायक अधिकारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा MPHW पुरुष महिला अथवा ड्रेसर वर्ग एक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की है पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों का नेत्र सहायक का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना तथा छत्तीस

पैरामेडिकल परिषद अधिनियम 2001 के अंतर्गत जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 19 जून 2026 को स्थानीय कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित की गई। बैठक में दावा आपत्तियों के परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन सूची एवं अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 1 अप्रैल 2026 की स्थिति दर्शाने वाली MPHW पुरुष महिला एवं ड्रेसर वर्ग एक की अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन सूची तथा अंतिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया गया है। संबंधित कर्मचारी एवं अभ्यर्थी उक्त सूची का अवलोकन जिला सरगुजा की आधिकारिक वेबसाइट www.sarguja.gov.in पर कर सकते हैं। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म लीडर का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत निर्देशन नौशाद अली का।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा, समाचार जनसंपर्क कोरिया से। कोरिया जिले में विश्व योग दिवस विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न पंचायत कार्यालय परिसरों, खेल मैदानों तथा ग्राम पंचायतों में निर्मित अमृत सरोवर तटों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योग सत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंचों, ग्राम सचिवों, रोजगार सहायकों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। इसके साथ ही मनरेगा के श्रमिकों और स्व सहायता समूह की दीदियों की सक्रिय सहभागिता भी कार्यक्रम में देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश दिया। विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग के माध्यम से लोगों को योग के महत्व और उसके दैनिक जीवन में उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। जिला प्रशासन की ओर से योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं संबंधित विभागों के समन्वय की सराहना की गई। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म अनपढ़ का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत राजा मेहंदी अली खान का, संगीत मदन मोहन का।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। 24 जून की ग्राम सभाओं की तैयारी पूरी, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु पंचायत अमले को दिया गया प्रशिक्षण। कोरिया कलेक्टर के निर्देश के अनुसार जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों ने भाग लिया। जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये प्रशिक्षण आगामी 24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर सूची के सत्यापन, ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण, अनुमोदन तथा अभिलेख के संधारण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के सभी बिंदुओं की चरणबद्ध जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की गई। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म सुजाता का गीत।

कार्यक्रम की अगली खबर मिल रही जनसंपर्क अंबिकापुर से। लैब टेक्नोलॉजिस्ट पदोन्नति हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना 11 जून 2020 के प्रावधानों के अनुसार लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद पर पदोन्नति के लिए पात्र MPHW पुरुष महिला एवं ड्रेसर वर्ग एक कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची, अंतिम चयन सूची एवं अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो MPHW पुरुष महिला एवं ड्रेसर वर्ग एक के पद पर कार्यरत हैं तथा लैब टेक्नोलॉजिस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी का उक्त पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का सेवा अनुभव होना, लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल परिषद अधिनियम 2001 के अंतर्गत जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। भर्ती नियमों में निहित प्रावधान के तहत विभिन्न संवर्गों की विभागीय पदोन्नति के लिए 19 जून 2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आम्रपाली का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आम्रपाली के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

0: मंगेशकर की आवाज में फिल्म आम्रपाली के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 8 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता

0: की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है।

0: हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country.

0: Lucknow fire incident, four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू होती ले। श्रोता साथी हो, 31 मई के पूरा देश विदेश में मन की बात कार्यक्रम हमन सुनें और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी हमार छत्तीसगढ़ के एक पुरातात्विक स्थल मल्हार की चर्चा करें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: जब मल्हार की चर्चा होइस, ताम्र पट्टिका के चर्चा होइस, तो मल्हार के रहोइया जम्मो रहवासी मन के चेहरा में एक अलग उत्साह देखे बर मिलिस कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमार कस्बा के, हमार मल्हार के नाम के उल्लेख करिन। आज हमार साथ श्री संजीव पांडे जी उपस्थित हैं आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में। आप ताम्र पट्टिका ला विशेष रूप से संरक्षित करके आप रखे हाओ, एकर बारे में हमन चर्चा करबो। लेकिन जैसे कि हमन कहें कि मल्हार एक पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक महत्व है वो जगह के, सबसे पहले तो आपका स्वागत कर

0: रथन आज के कार्यक्रम में, और आपसे हम जानना चाहथन कि हमार श्रोता साथी मल्ला मल्हार के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देवा।
1: आकाशवाणी के जम्मो श्रोता साथी मल्ला जय जोहार करत हो, जय छत्तीसगढ़, जय मल्हारगढ़। मल्हार हमार छत्तीसगढ़ के प्राचीन संस्कृति के जुन्ना जतका भी विरासत है, ऐतिहासिक स्थल है, ओकर गौरवशाली अतीत के एक ठन झलक है। मल्हार कहते साथ मल्हार के नामकरण के भी नाम आते। मल्हार के तलाव में, डेहरी में, हर घर में, हर तुलसी चौरा में शिव जी के उहला प्रतिमा है, ओकर नाम से हमर मल्हार के नाम पड़िस। ऐसे हमर मानथन होला मल्हारी शिव, शिव जिलम मल्हारी करके संबोधित करथन। तो मल्हार के बारे में दो तीन प्रकार के बात है। राग भी में मल्हार आते, और हमन चूंकि बहुतायत में वहाँ एक मुखी शिवजी से लेके 1000 शिवलिंग तक के मल्हार में हवा है। वहाँ तालाब में है, घर मन में है, देवालय में है, तेकर नाम से मल्हार पड़िस। मल्हार ऐसे जगह है जिहाँ इतिहास के पढ़ैया मन पर बहुत सामग्री है, चाहे वह पंचतंत्र के कहानी हो, चाहे जातक कथा हो। लेकिन मन के जब भी शैक्षणिक भ्रमण माथे तो मैं ये सब पिल्हर मल्ला उमल बड़ा गर्व से दिखाता हूँ, घुमाता हूँ। उसी प्रकार से मल्हार के एक किसान है, कुआं खोदे में गड्ढा करत रिसे, और वह जानत नहीं रिसे, और वहाँ जिन गड्ढा खोदत रिसे वहाँ बने बुनाए वाला कुआं मिल गए। हमर मल्हार ऐसने ऐतिहासिक मल्हार है जी हाँ, पुराना संपदा भरे पड़े है। यदि मल्हार के उत्खनन किए जाए तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व में शामिल करे के लायक, विश्व विरासत में शामिल करे के लायक जगह बन जही, ऐसे मोर मानना है। मल्हार के उत्खनन में एकर पहली भी बहुत सारा सामग्री मिले है। सागर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े इतिहासकार डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी जी वहाँ के प्रमुख ऋण है मध्य प्रदेश के समय में, वह उत्खनन करा रही से तो मल्हार में प्राचीन बस्ती दबे मिले रही से। मल्हार में एक शिव मंदिर है, वह है भारत में अद्वितीय शिव जी के मंदिर माने जाते। मंदिर के आधार पीठिका 108 कोण वाला है, और वहाँ वास्तुशास्त्र के 250 विशेषता ला तो मैं ही बता सकता हूँ, मानो और बहुत सारा विशेषता हुई। प्रवेश द्वार में गंगा यमुना काल भैरव बैठे है, वहाँ कल्पवृक्ष पायदान में बैठे है, भगवान नवग्रह ऊपर में पैनल के रूप में है, गणेश जी के दो पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों दिशा में बैठे है। तो इसना मल्हार के महिमा महान है। मल्हार के कण कण में देवता धामी है। यहाँ 126 तालाब है, जिला हमन छत्तीसगढ़ी में छह अगर छह कोरी कथन, छह अगर छह कोरी तालाब, वह जम्मू है भगवान के नामकरण में है। कोनो के नाम ऋषि मुनि के नाम से है, मार्कंडेय कुंड, कोनो के नाम राम सागर, लक्ष्मण सागर, परमेश्वरा सागर, ऐसे टाइप के सब प्राचीन समय में जुन्ना टाइम में हमर सियान मन पुरखा मन एक नामकरण भी उसने है टाइप के रखे है। मल्हार हमर दक्षिण कौशल के राजधानी रही से, एकर प्रमाण मैं आप लोग जरूर बता सकता हूँ। महू अपन 25-30 साल 40 साल ले पिताजी के दादाजी के सानिध्य में रहे, यहाँ के उत्खनन वगैरह लम मैं देखे। यहाँ एक बंदरगाह भी है लीलागर नदी में।
0: अच्छा।
1: वो बंदरगाह है लीलागर नदी से शिवनाथ नदी जाते, और शिवनाथ नदी है जोड़ते वाला उड़ीसा के बॉर्डर में। अल हमन कौसाम्बी के मार्ग कथन इतिहास के भाषा में, या राष्ट्रीय सेमिनार में जाथन तो सुनथन, ये वही मार्ग है। इमले वो समय व्यापार होते रही जल मार्ग से, ओकर स्पष्ट प्रमाण मल्हार में हवा है। ये तरह से शोधार्थी भर, पढ़िया लिखैया भर, इतिहास के सिक्का ताम्रपत्र मल्हार से प्राप्त शिलालेख एवं प्रचुर मात्रा में अध्ययन करे भर बहुत सामग्री है। मल्हार एक बहुत विशेषता लिए हुए नगर है, प्राचीन गौरव वाला जगह है, और ओकरे हम बड़ा गर्व से कथन कि करे जन वृद्धि शोभा के ओला श्रृंगार कथे, और करे हर मन लजन मोहित बोला मल्हार कथे, ऐसे के एक्शन हमन कहावत भी कथन।
0: जी जी, आप जैसा जानकारी दे था हमन ला तो ऐसा लगा थे कि हमन कथा सुनत हन, है
1: जी,
0: ना
1: जी हाँ साहू जी।
0: कथा के रूप में और भी हमन बाद में चर्चा करबो
1: जी।
0: अभी जो पुरातात्विक स्थल मल्हार के बारे में आप चर्चा करा था
1: जी,
0: तो यहाँ जो मूर्ति मिलते
1: जी,
0: वो कौन कौन से देवी देवता के मूर्ति मिलते और कितना पुराना रथ है यहाँ
1: मल्हार में? चारों संप्रदाय के, जैन बौद्ध वैष्णव शैव, चारों संप्रदाय के प्रतिमा हाँ मल्हार में भी संग्रहालय में संजो के संस्कृति विभाग रखे हुए है। चारों संप्रदाय के प्रतिमा मिलते, मूलत ऐसे लगते बहुत बड़े

0: बड़े विद्वान मनाथे उनको सानिध्य भी मोल मिलते, तो मल्हार है एक समन्वय स्थल भी रही से। मल्हार में सब्बो संप्रदाय के प्रतिमा विद्यमान है, एकर से एक कला केंद्र के रूप में विकसित रही सो ही ऐसे लगते और समन्वय स्थल भी रही से।
1: काफी प्रसिद्ध जगह है ये मल्हार हर, तब मोल लगते ना कि कहीं ना कहीं से मल्हार की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में करें, और विशेष रूप से ताम्र पट्टिका के बारे में। और ये जो ताम्र पट्टिका है ये आपके घर में सुरक्षित है, संरक्षित करे के प्रयास आप करे हो, तो ये बात आपके घर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, फिर प्रधानमंत्री जी अला मन की बात कार्यक्रम में शामिल करें, ये यात्रा के बारे में बतावा। कैसे पता चलिस कि आपके घर में ये अमूल्य संपत्ति है आज की तारीख में?
0: जी, मोर दादाजी पंडित छेदीलाल पांडे है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से।
1: हाँ।
0: और वो हर पुरातत्व के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति रहे हैं। मैं मिडिल स्कूल के छात्र रहे हूँ और मोर पिताजी है रघुनंदन प्रसाद पांडे, राष्ट्रपति सम्मानित रहे हैं, जिन मल्हार के इतिहास में 4 ही पुस्तक लिखे है आज से 82 में। और इमन पुरातत्व के प्रति अतका समर्पित व्यक्ति है कि मल्हार के हर पथरा लेमन देवता मानत रही हैं। अतका समर्पित व्यक्ति है इमन ल मैं बचपना में देखत रहें, इकर सानिध्य मिलत रही से, और ऐसे करके इकर संग्रह ल मैं देखो और समय बच्चा रहे मैं, तो सिक्का मिला है मोर पिताजी लाख वाला बहुत सुरक्षित अमूल्य धरोहर के रूप में रखा है। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर की के मोला बतावा है, यही है हमार मल्हार असली मल्हार की के। ऐसने टाइप के एक निजी संग्रह बना के मोर पिताजी रखिन, और संग्रहालय में आज मौर्य शासक मन के टेराकोटा आर्ट के पार्ट्रीज मन है, वो समय के राजा मन के टेराकोटा में जिन सील बने हैं, सील के उपयोग करें वो सील हम संग्रह में है। मोर पिताजी के ये संग्रह में एक किसान खोदत रिन्हे मल्हार में, जुताई कर दिन कृषि काम के जुनवानी खार कथन। मल्हार के हो सबले प्राचीन जगह है, प्राचीन क्षेत्र है, एक ठन तो सोनवर्षा खार भी है। मल्हार में बहुत सारा सिक्का मिले हैं और आज भी मिलत थे
1: सोना के।
0: जी हाँ। अच्छा। तांबा के, जस्ता के, चांदी के, सोना के। मल्हार राजधानी रही से, तो राजधानी माने समृद्धता के एक पहचान भी है, और ये सब मिलते ओकर से प्रमाणित भी हो जाते। सबले पहली मैं उल्लेख करत बतावत रहे कि तालाब ओ समय राजधानी में इनकम ऑफ सोर्स राजा मन के तालाब से हुआ त्री से, तो इसने ये सिक्का वगैरह जारी हुआ उन्हें तो सिक्का मिली। मल्हार से सिक्का जारी करके पत्थर के ढलवा भी है, वहाँ ढलाई करत इन्हें राजा के समय सिक्का जारी करे, वो सब ढलाई के पत्थर मोकर खांचा सांचा सब यहाँ विद्वान है, तो यहाँ से सिक्का भी बहुत मिलत रहते। आज भी पानी के कटाव में हमारे लेकर रहें तो खोजे जाते रहें, हमारे पिताजी का अनुसरण करते हुए उनकर देखन नकल कर करके सिक्का पाबो, सामान पाबो, ऐसे की के तो ऐसे करके संग्रहालय मोर पिताजी है समृद्ध बनाइन। स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे 4 पुस्तक भी लिखिन और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिले सुनल उनकर विद्यालय में, तो ये संग्रह ल बढ़ाएन और ताम्रपत्र उन्हीं ले प्राप्त हो। पूरा क्षेत्र में हल्ला हो गई से कि मल्हार के इतिहास पुरातत्व ल संजो के रखने वाला परिवार है वह स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे, छेदीलाल पांडे, पांडे परिवार है की के। तो ये ताम्रपत्र ल खेत के जोताई में एक किसान मिलिस, वह हमार पिताजी से बहुत प्रभावित व्यक्ति रही से, उनकर विद्वता से, उनकर हर चीज़ से, वह आके बताइस फिर कि महाराज ये ताम पत्र हल पाए हो कि के। वो किसान लगले हमार पिताजी के पास आइस, मोर पिताजी है ओला अपन हाथ में रखिन और वो समय में पुरातत्व विभाग के पूरा अधिकारी ल खबर करिन। मोले याद है बिलासपुर में संग्रहाध्यक्ष जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आनंद कुमार रिजबुट साहब रिन है, ओला दिन वो मल्हार आइस, मल्हार आइस तह ओला ओकर अवगत कराइन, ओकर प्रिंट वगैरह लेगिन, ओकर बारे में पूरा डिटेल ल बाहर भेजिन और ओला पता करिन। तो वो है राजा महाशिवगुप्त 12 अर्जुन के ताम्रपत्र के उल्लेख ल 2 पन्ना में फिर साहब एक हफ्ता के अंदर अवगत कराइन हमार पिताजी ल। ऐसे करके ताम्रपत्र वगैरह सब मल्हार के प्राचीन धरोहर ल संरक्षित करे बर संजोए बर हमार पिताजीवन प्रयास करिन, ओगला महू आगे बढ़ाएं। आज मोर पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, वो संग्रहालय मैं रखे हुए हूँ, यह उकरे असली मेहनत है। मैं तो उमा आगे जरूर बढ़त हूँ लेकिन ये उकरे तपस्या मानत हूँ मैं, उकरे संग्रह है मल्हार लजन हर पत्थर देवता के समान माने ऐसे समर्पित व्यक्ति रिन है। और ताम्रपत्र आइस और मोर संग्रह में पिताजी के संग्रहालय में।

0: लगभग सिक्का भी है, वह बहुत सारा सिक्का है जेन कई प्रकार के कई काल पीरियड के कई राजा मन के है, खरोष्टी भाषा के है, रोमन भाषा के है, ब्राह्मी लिपि पाली भाषा के जनरली मिलवेज करते मलार जितका भी लेख वगैरह मिले है, एक शिलालेख भी मोर घर में है।
1: मैं ये आपने जानना चाहते रहे संजय जी कि ये जो ताम्र पट्टी का मिले है ओकर खासियत का है, उसमें का अंकित है, कौन सा भाषा में का लिखे है, कुछ एक बारे में बतावा।
0: ये ताम्रपत्र राजा महाशिगुप्त बालार्जुन के समय के ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र के वजन 3.5 किलोग्राम के लगभग है। यह 3 पट्टिका में हवा साहब, 3 फलक में हवा और एक बढ़िया गोलवा रिंग में गुथाए हुए है। अल हमन कंप्लीट कथन ऐसने एक ठीक सिंगल फलक भी है, ओकर आउ कहीं भाग रिस हुई एक ताम्रपत्र राजा भरत बल के मोर यहाँ आउ रखा है संग्रह में, तो वह इनकम्प्लीट है, अधूरा है, लेकिन यह पूरा रिंग से बढ़िया गुथाए हुए है और 3 ठीक पट्टिका है और वहाँ सुंदर ढंग से हमर प्राकृत भाषा, पुराना भाषा, ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में वहाँ लेख खुदे हुए है, उत्कीर्ण है और एकर लंबाई मोटाई है लगभग आधा आधा फीट के है तीनों फलक के, और यह रिंग में गुथे जन रिंग में उमा एक पद मुद्रा लगे हुए है, वो पद मुद्रा है गोल साइज के है, वो गोलवा साइज में देखथन तो बहुत सुंदर भगवान शिव जी है नंदी में सामने बैठे हुए है, उमा शुभ के रूप में एक कमल फूल दर्शाया गया है, उमा त्रिशूल दर्शाया गया है, वहूँ में छोटा सा एक ठो लेख भी है वो ताम्रपत्र के हल्का सा डिटेल के बारे में, वो कब के कायत है यह राजा महाशिगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र है जिन मल्हार के जुनवानी खार में मिलिस, मल्हार से प्राप्त हुईस, 3 फलक में है, शुद्ध तांबा के है साहबहर
1: जी। जी बहुत बढ़िया, आप सरल भाषा में हमार श्रोता मोला जानकारी दे आप मन। आपसे अब जानना चाहत हन, बार बार हमन चर्चा करत हन कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शहर के, आपके ताम्र पट्टिका के उल्लेख करें है ना
0: जी।
1: एक जो ज्ञान भारत टीम जो है आपके घर पहुंची
0: जी,
1: वो मतलब कैसे पता चलिस कि आपके घर में अमूल्य धरोहर है और का प्रक्रिया अपनाइन कि ये जो घटना है राजधानी तक पहुंची सवेल मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपन विचार ल साझा करें
0: जी। ज्ञान भारत बिलासपुर के टीम है साहब, जिला पंचायत अधिकारी से मोर व्यक्तिगत परिचय से संदीप अग्रवाल साहब से, तो मलार आते तेल मतलब घुमाथन हमन तो व्यक्तिगत रूप से हमारे जाना रहते, तो मलार वाला महाराज लंग जा तो बहुत जुन्ना जुन्ना संग्रह है, क्योंकि पूरा टीम लग ज्ञान भारत के भेजिस जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल साहब हर, तो वो टीम हम मल्हार आइन मल्हार में बढ़िया भेंट हुईस बैठन, मोर संग्रह देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करिन, वो संग्रह में ये ताम्रपत्र मैं उमल दिखाएँ, ताम्रपत्र में उमन बहुत खुशी होके वीडियो रिकॉर्डिंग करिन, ओकर पूरा डिटेल नोट करिन, ओकर सब प्रकार के जिन माननीय प्रधानमंत्री जी है हमार पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान जिन चला थे केंद्र सरकार के द्वारा, उमा पांडुलिपि सर्वेक्षण में बहुत सुंदर चीज़ हमन पागन की के एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए हमार पांडे जी के संग्रहालय, और मल्हार में आयन तो बहुत बढ़िया हमारा आना सार्थक हो गए, ताम्रपत्र देख के बहुत खुशी व्यक्त करिन, ओकर पूरा फिर डिटेल नोट करिन, फोटो खींचिन, ओला सब अवगत कराए में है कब मिलिस का हुईस सब प्रकार के ला, हम बहुत प्रफुल्लित होन कि कतका बढ़िया हमार माननीय प्रधानमंत्री जी है, अतका बढ़िया पुराना सामग्री मन के महत्व ला बढ़ाए बर, ओला सामने लाए बर, भावी पीढ़ी में अवगत कराए बर, अध्ययन करे बर, संजोए बर, अतका बढ़िया प्रयास कर थे कि के, और उमन ले के गई है तहाँ 8-15 दिन में मोला फिर सूचना आ गए, हमन बहुत खुशी होन मल्हार के मन लम्बा बताएं, बहुत प्रसन्नता होइस मोर परिवार में एकदम खुशी के माहौल छा गए कि हमार पिताजी दादाजी मन पुरखा मन अतका बढ़िया जिन चीज़ ला संग्रहित करके रखे है, आज ओकर महत्व कतका बड़े है ओला हमन समझेन, पहले भी समझत रहन, लेकिन आज हमारे एक ठन थोड़ा सा प्रोत्साहन बरोबर मिल गए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात के एपिसोड में हमार ताम्रपत्र के उल्लेख आही और तुम्हार चयन कर लिए गए है कि मोला बिलासपुर कलेक्टर द्वारा सूचना दिए गई।
1: अच्छा,
0: माननीय संजय अग्रवाल के द्वारा SDM साहब फोन करके बताइन कि महाराज मल्हार के तुम्हार समान है संग्रह में ताम्रपत्र के, ताम्र पट्टिका के ओकर उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी है अपन एपिसोड में 31 मई के।

0: गरही आप लोग संभवतः संयोग में भाग्यशाली हो हा, बात भी हो सकत है आप कहूँ झंझा कह के, तो हम बहुत प्रसन्न हो भाई और बहुत प्रसन्नता हो समल्ला कतका बढ़िया हम लगिस मल्हार के हमारे इतिहास राष्ट्रीय स्तर में पहचान बना थे और ये तामपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी है माननीय मोदी जी है अपन आखर से बोलिन मन के बात में ओहूल हम बहुत ध्यान से पूरा चौपाल बना के गाँव में गुड़ी में रेडियो में सुनत रहन बहुत खुश होन फटाका फोड़ेन और मिठाई बाँटेन बहुत खुश होन एक दूसरे बधाई देन कि हमर मल्हार छत्तीसगढ़ के प्राचीन दक्षिण कौशल के राजधानी कथे तेन मल्हार लाज हमर माननीय प्रधानमंत्री जी मन के बात में उल्लेख कर थे यहाँ के तामपत्र के कतका बढ़िया उल्लेख आ गए राष्ट्रीय पहचान मिल गए कि हमन पूरा गांव क्षेत्र में एकदम गदगद हो गए साहब
1: जी। पांडे जी आप मन चौपाल लगा के पूरा गांव वाला मन आप मन सुना
0: जी
1: मन की बात कार्यक्रम ला
0: जी।
1: हर एपिसोड में कोई ना कोई बात होते जो हर आदमी ला प्रोत्साहित करते
0: जी हाँ साहब
1: ऐसे ऐसा बात बताते हैं जिला हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं से सूचना मिलते और वो बात मतलब वो शामिल करते हैं। ऐसे ही ये घटना आपके मल्हार में भी घटी
0: जी
1: आप मन खुशी भी व्यक्त करा और जब आप मन खुशी व्यक्त करा और चर्चा हुई आप मन के मल्हार के एकर बात तो एक पूरा उत्सव जैसा माहौल हो गए
0: जी सर।
1: और जनप्रतिनिधि मन अधिकारी कर्मचारी मन आप मन से फिर तो संपर्क करीन हुई अलग अलग तरह से लोग अपन खुशी जाहिर करीन हुई तो कैसे कैसे आप मन के भेंट मुलाकात हुई इस लोग मन से जनप्रतिनिधि मन से विधायक मन से मंत्री मन से हर कोई आप मन से मल्हार वासी मन से वो खास करके आप मन से मिले के प्रयास करीन हुई।
0: मन की बात के जहाँ उद्घोषणा हुई कार्यक्रम में देखिन तो सबले पहली मुला कर्नाटक के बुलगरगा यूनिवर्सिटी के एक जन प्रोफेसर मोर संगी जिन मल्हार के भ्रमण कर रहे से
1: अच्छा
0: और बिहार के जिला पुरातत्व के डॉक्टर विशु उपाध्याय जिन डिप्टी डायरेक्टर है बिहार सरकार में उमन आए रहे ने ऐ मन मोला फोन करके बताइन कि महाराज तू तो टीवी में दिखा था बधाई हुआ मन के बात कार्यक्रम में मल्हार के जिन तामपत्र हम देख के आए रहन ओला आज प्रधानमंत्री जी हर संबोधन करत है कि तो मैं फिर महू टीवी में चालू करके देखे और देखे उनके बधाई सबले पहली मूल्य मिलीस तहाँ बिलासपुर के अधिकारी रायपुर के मूर जितका परिचित अधिकारी रिन है विश्वविद्यालय के रायपुर के डॉक्टर नीतीश मिश्रा जी रिन है इतिहास विभाग के जिन प्रमुख है रविशंकर यूनिवर्सिटी के ऊ फोन बधाई दिन जम्मो लगल है बहुत जन के मूला लगातार बधाई मिले लगीस तो मोरो छाती फूलिस कि मैं मल्हार में पैदा हुए मल्हार एक ऐसे बहुत सुंदर नगर है प्राकृतिक नगर है पुरातात्विक संपदा के धनी नगर है मैं बिल्कुल अपन खुश हो गए मैं भगवान मोला बहुत अच्छा जगह पैदा करीन कही के अब बहुत सारा मोला लगातार बधाई एक हफ्ते ले चलत रही साहब
1: जी ये बीच में हम मन प्रयास करें आपसे भेंट करे के फोन के माध्यम से आपसे बातचीत हुई व्यस्तता आपके रही से अब थोड़ी व्यस्तता कम है तो आप लोग आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो बुला के यहाँ आपसे हम लंबी बातचीत कर रहे थे है ना
0: साहब।
1: पांडे जी
0: जी सर
1: ये सारा चीज इतना बड़ा घटना घटिस
0: जी
1: है ना खुशी मनाया खूब आप मन है ना
0: जी।
1: आपके तीन पीढ़ी लगातार मल्हार और आसपास के क्षेत्र में जितना भी पुरातात्विक जिनिस जो मिलते ये मल्ला आप मन संरक्षित करे के प्रयास करा था आप मन के पूरा टीम है जेमन एकर संवर्धन बर लगे हुए हैं और समय बेसमय जो कुछ घटनाएं भी घट जाते कि कोई मूर्ति उठा के ले जाते कुछ ये करते वो करते ओकर से बहुत सारा नुकसान भी होते कि जो शोधार्थी हैं वो मल्ला ओमन वंचित हो जाते हैं ओकर से तो आपके मल्हार के जितना भी पुरातात्विक चीज है महत्व के चीज है ये मल्ला सुरक्षित रखे खातिर संरक्षित करे खातिर आप गाँव वाला मन के का प्रयास होते कि ये सब सुरक्षित रहे और नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एकर से जुड़ सके।
0: हाँ साहब यही हमार राष्ट्रीय धरोहर राष्ट्रीय धरोहर के पहचान है प्राचीन संस्कृति ही है तो हमला पुराना संस्कृति के बारे में ज्ञान दी हमार पूर्वज मन जब रजिस्ट्रार नहीं रही होत रही से वो समय पुलिस के व्यवस्था नहीं रही से,

0: तो प्रशासक मन का करत रहिन है, राजा के द्वारा मा कैसे शासन चलत रहिसे, यही है हमन ला इतिहास पुराना चीज ला अवगत कराते। वो सभ्य समान हमर मल्हार में है, वो समय दंड के प्रक्रिया के कतका बढ़िया मल्हार के पत्थर में अंकित है, चोर मन ला दंड दिया जाए तेन हर। और अभी जन तामपत्र उल्लेख करत रहन, यह वही है राजकीय आदेश या जमीन के राजा मन एक दूसर लंग आदान प्रदान कराए, खरीदी बिक्री कराए, लेन देन कराए, तो दान पत्र तामपत्र के माध्यम से कराए। ऐ है हमल नया पीढ़ी ला बताते कि हमर प्राचीन संस्कृति का रहिसे, और वो समय कतका हमन समृद्ध रहन और आगे रहन, हमर नया पीढ़ी पर शोध पर ये सब बहुत आवश्यक है। हमला पुरातत्व संपदा ला अक्षुण बनाए रखे पर मेहनत करना चाहिए, ये हमर भावी पीढ़ी है, एकर से ज्ञान प्राप्त करी और निश्चित ही एकर से हमन आगे बढ़बो, हमला बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मौका मिली।
1: ऐसा एक प्रयास है आप मन के, और के बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ और जैसे आप दो लाइन के मल्हार के बारे में आप सुनाए, ऐसे कुछ और बात है जो आप सुनाना चाहते हो?
0: जी हाँ, हमन मल्हार के प्राचीन मंदिर मूर्ति ल देखथन तो उपेक्षा भी वह थोड़ा सा तरस आते। एक अच्छा आकर्षक हमर छत्तीसगढ़ राज्य के संग्रहालय है मल्हार में बन जतीस तो हमर पुरातात्विक संपदा जिन धूप पानी में नष्ट हुआ थे ओकर संरक्षित हो जातीस कहके, तो एक बारे में अक्सर हमर पिताजी है कहे अपन रचना में, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, तेरी स्मृति में आँखों से बह जाता है पानी। एक ठन छोटा सा व्यथा भी है मल्हार के, है किंवदंती है, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, राजा बेनियु के सिरजे मल्हार। यह हमर पुराना लोकोक्ति मुहावरा में सियान मन कहे।
1: जी बहुत बढ़िया, आप चार लाइन में आप बताया। चलते चलते आप से एक और छोटी सी बात करना है कि ताम्र पट्टिका आपके घर में मिली
0: जी,
1: और ये ताम्र पट्टिका आपके बाबूजी मतलब आपके पिताजी बहुत तेल सुरक्षित रखें अध्ययन करें आप लभी बताएं, ओकर से पहले आपके दादाजी जल हम छत्तीसगढ़ी में बाबा कथन,
0: बाबा जी हाँ।
1: है ना, बाबा के हाथ में इस, बाबा के बाद दादा के हाथ में इस, दादा के बाद आपके हाथ में इस, आपके बाद अगली पीढ़ी में भी आई। तो आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जेकर आज पूरा राष्ट्र में चर्चा होते, कैसा महसूस करता आप और का करना है आप लागे?
0: यह एक ठन मुला बहुत बड़े जिम्मेदारी के एहसास हो गए साहब, मुला बहुत ही प्रफुल्लित हुए मन के बात माया के बात। एकर पहली मैं लगन से काम भी करत रहे हूँ और अतका बढ़िया मुला उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री तक मल्हार के बात है हमन के परिवार के माध्यम से, मोर पिता जीवन के प्रयास के माध्यम से पहुँचिस, उमा बहुत खुशी हुईस। और मैं एमा मोला काम करे के क्षमता आउ बढ़ गए, मोला जिम्मेदारी के आउ ज़्यादा एहसास होए लगिस, मोला बहुत सारा यहाँ के पुरातत्व संपदा छत्तीसगढ़ के पुरातत्व संपदा के बारे में रक्षा करे बा, मोला एक ठन बड़े समिति बना के काम करे की इच्छा होते। और मल्हार के लिए तो हमन तो लगे छुए हैं समर्पित भावना से, यहाँ एक निजी संग्रह ही है हमर तीन पीढ़ी के पहचान है जिला हमन सरकार के सब राष्ट्रीय धरोहर संजो के रखे हुए हैं, तो मोला बहुत प्रोत्साहन लगी से, मोल बहुत अच्छा लगी से, और मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गए ऐसे मैं मानता हूँ, और मोला बहुत काम करे हुए अपन जिंदगी भर।
1: जी आप लगातार पुरातत्व के क्षेत्र में आप काम कराओ और जो नई पीढ़ी है इला भी आप समझाए के कोशिश करा, जोड़े के प्रयास करा। अभी हमन श्री संजीव पांडे जी से बातचीत करत रहें और ये बातचीत के विषय रहिस पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय जोहार, धन्यवाद साहब।
1: और एक संग मोर भुइया के आज के व्यंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी राय।
1: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं।

रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार, स्नेह अभिवादन। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम गुंजन और मैं हूं आपका साथी राजीव। साथियों, आज के इस अंक में हम प्रारंभिक चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल किसी एक व्यक्ति, परिवार या वर्ग की समस्या है, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों, जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। ये सपनों, उम्मीदों और अगणित संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन जब नशे की लत किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है तो वह धीरे धीरे उसकी खुशियाँ, रिश्ते, स्वास्थ्य और भविष्य सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, नशा केवल शराब या सिगरेट तक सीमित नहीं है। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और अनेक मादक पदार्थ भी नशे की श्रेणी में ही आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एक बार आजमाने में क्या हर्ज है, लेकिन यही एक बार धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है। नशे की शुरुआत कई कारणों से हो सकती है। दोस्तों का दबाव, तनाव, असफलता, अकेलापन, पारिवारिक समस्याएं या फिर केवल जिज्ञासा। युवा वर्ग अक्सर ये सोचकर नशे की ओर बढ़ता है कि इससे तनाव कम होगा और वे आधुनिक और आत्मविश्वासी दिखेंगे, लेकिन सच ये है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि कई नई समस्याओं की शुरुआत है। साथियों, जरा सोचिए, क्या कुछ क्षणों की झूठी खुशी के लिए अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाना सही है? बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म मुद्दत का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। गीत इंदीवर का, संगीत निर्देशन बप्पी लाहिड़ी का।

0: आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म मुद्दत का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता साथियों, नशे का सबसे पहला और गहरा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। तंबाकू और सिगरेट फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर, हृदय, मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन

चिंता और अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं से घिर जाता है। कई बार नशा व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे दुर्घटनाएं और हिंसक घटनाएं बढ़ जाती हैं। याद रखिए, नशा व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर बनाता है। ये केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को भी खत्म कर देता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य नहीं तो जीवन की सारी उपलब्धियाँ फीकी पड़ जाती हैं। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम में एक मधुर गीत फिल्म प्रेम रोग से। संतोष आनंद का लिखा नगमा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म प्रेम रोग का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: दोस्तों, नशे का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो इसका सेवन करता है, इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। नशे की लत के कारण घर का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, परिवार में तनाव, झगड़े और अविश्वास बढ़ने लगता है। बच्चों पर भी इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं और कई बार उनकी पढ़ाई और व्यक्तित्व विकास भी प्रभावित होता है। कई परिवार तो नशे के कारण टूटने की कगार पर आ जाते हैं। एक खुशहाल परिवार की नींव प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी पर टिकी होती है, और नशा इन सभी को कमजोर कर देता है। याद रखिए दोस्तों, यदि कोई आपका अपना इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे तानों की नहीं बल्कि सहयोग और समझ की जरूरत है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में SH बिहारी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन, फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

0: मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: साथियों, जब बड़ी संख्या में लोग नशे की गिरफ्त में आते हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई पड़ता है। नशे के कारण अपराध, सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है। कार्यस्थलों पर उत्पादकता कम होती है और समाज की आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है। एक स्वस्थ समाज वही है जहां लोग जागरूक हों, एक दूसरे का सहयोग करें और बुरी आदतों से दूर रहें। हमें यह समझना होगा कि नशा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती है जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। दोस्तों, देश का भविष्य हमारे युवा हैं, लेकिन यदि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। याद रखिए, असली पहचान नशे से नहीं बल्कि आपकी मेहनत, प्रतिभा और अच्छे विचारों से बनती है। अपने समय को खेल, संगीत, पढ़ाई, योग, कला और रचनात्मक गतिविधियों में लगाइए। अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। ना कहने की आदत विकसित कीजिए। कई बार एक दृढ़ नहीं आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शेषनाग से, अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: श्रोता साथियों, आज 23 जून को पूरी दुनिया विश्व ओलंपिक दिवस मनाती है। ये दिन खेल, स्वास्थ्य, मित्रता और मानव एकता का प्रतीक है। इसी दिन वर्ष 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसने आधुनिक ओलंपिक को जन्म दिया। इस दिवस का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खेलों के माध्यम से बेहतर इंसान और बेहतर समाज का निर्माण करना है। खेल हमें अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं। मैदान में खिलाड़ी किसी भी देश, भाषा या संस्कृति का हो, खेल की भावना सबको एक सूत्र में बांध रखती है। ओलंपिक के 3 प्रमुख मूल्य हैं, श्रेष्ठता, मित्रता और सम्मान। यही मूल्य हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अपने पराये से, येशुदास और साथियों की आवाज़ों में। गीत योगेश का, संगीत निर्देशन बप्पी लाहिरी का।

मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। साथियों, आज हम एक ऐसे विशेष अवसर पर आपसे जुड़े हैं जो समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले लाखों

लाखों कर्म योगियों को समर्पित है। आज 23 जून पूरे विश्व में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ये दिन उन सभी लोक सेवकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात समाज की भलाई और नागरिकों की सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं, चाहे शिक्षक हों, चिकित्सक हों, पुलिसकर्मी हों, सफाई कर्मचारी हों, प्रशासनिक अधिकारी या अग्निशमन कर्मी। इन सभी की निष्ठा और समर्पण से ही समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गजब से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म गजब का गीत। साथियों, आज के गुंजन में हमने विश्व ओलंपिक दिवस के माध्यम से खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन के महत्व को समझा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर समाज और राष्ट्र के विकास में लोक सेवकों की भूमिका को जाना और नशा एक सामाजिक बुराई विषय के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया कि स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक जीवन ही सच्ची सफलता का आधार है। आइए हम संकल्प लें कि खेलों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएंगे, समाज की सेवा करने वालों का सम्मान करेंगे और स्वयं भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। साथ ही नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन और स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं।

आप सुन रहे थे गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में 510 करोड़ रुपए की लागत के 300 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने और धान के साथ अन्य फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2036 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान किताब, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की स्थिति पर भी चर्चा के साथ ही VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर भी चर्चा होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंबिकापुर में हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाकर साप्ताहिक से द्विसाप्ताहिक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के रायपुर कार्यालय में नए क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार कल पदभार ग्रहण करेंगे। दुर्ग में कुरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुरियर संचालकों की बैठक की और अधिकारियों ने सभी पार्सलों की सख्त जांच और बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। अगले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही, साथ ही यह है बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ भी। प्रकृति यहाँ लहलहाती है, बलखाती है और है मुस्कुराती। यहीं का एक बेहद खूबसूरत इलाका है बस्तर। कभी बस्तर दुर्गम घाटियों और घने जंगलों की आदिम बस्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर जाना जाता है चहुमुखी विकास के लिए। बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों में अब विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। यहाँ के दूर दराज के इलाके भी अब पहुंच मार्गों से जुड़ चुके हैं। गांवों, टोलों और मजरों तक शिक्षा की अलख जग चुकी है। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। बेरोजगारों के लिए स्वावलंबन के नए नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर खेलों में भी सबसे आगे है। खेलो इंडिया के राष्ट्रीय खेल आयोजन में यहाँ के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दमखम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यही तो है बस्तर के विकास की एक साफ तस्वीर
1: कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर क्षेत्र का जो पहला प्रवास है और वो भी सुकमा की धरती से शुरू किए हैं और इसके पहले भी हम कई बार सुकमा आए हैं, लेकिन आज जो इतनी गर्मी के बाद इतनी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रमाण है कि सबको विकास पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है। और आज हम पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो पाया है और ये क्षेत्र जो 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक विकास से वंचित रहा, नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुँचाए हैं, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी

संभाग बनाएंगे, विकास यहाँ पर पहुँचाएंगे, वो काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर 308 करोड़ के विकास कामों का सौगात सुकमा जिले को मिला है, उसके लिए भी सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।

0: पहले बस्तर की वादियों में एक डरी सहमी सी आहट गूंजा करती थी, लेकिन अब उसकी जगह साहस और भरोसे के गीत गाए जा रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते अपने ही गाँव में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गाँव के ही पढ़े लिखे युवक युवतियां उनके अच्छे शिक्षा दूत जो बन गए हैं। दशकों तक उग्रवाद की गिरफ्त में रहे बस्तर के युवा अब गुमराह नहीं होते, क्योंकि वे समझ चुके हैं लोकतंत्र की शक्ति को। नियत मिलनार योजना ने यही काम तो किया है। इस बारे में नारायणपुर की जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा खलखो ने बताया।
1: बस्तर संभाग के प्रभावित क्षेत्र में स्थापित जो नए कैंप स्थापित हो रहे हैं उनके 10 किलोमीटर के परिधि पे हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसको नियत निलंबनार योजना मूल रूप से इसको कहा गया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% लाभ हम लोगों तक पहुंचा सके। इस योजना में इनिशियली जो 1.0 जो जिसको कह सकते हैं वो 5 जिले शामिल थे, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। 2.0 जो नियत निलंबनार 2.0 नियत निलंबनार 1.0 का विस्तार करते हुए शासन लाना चाह रही है। ये इसको 10 जिलों में टोटल शासन लेकर के आ रही है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, गरियाबंद, मोहला मानपुर और खेरागढ़ छुईखदान। इसके अंतर्गत भी जितने गांव हमारे पूरे जिले में हैं उन सभी को हमको टारगेट करना है और वहां तक हमको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर उनको सैचुरेट करना है। इसमें जो है सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। पंचायत ग्रामीण विकास हो गया, पीएचई हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हो गया, क्रीड़ा, विद्युत, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। जितने भी लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि से गाँव का संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी नियत निलंबनार योजना में नक्सल पीड़ित रहे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं और जन जागरूकता से हम शासन की विकासकारी योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं। नियत निलंबनार योजना जो 1.0 थी उसके अंतर्गत काफी काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, विद्युत लाइन बहुत सारे गाँव में पहली बार गई है। पीडीएस हम अब ट्रैक्टर के माध्यम से अंदर अंदरूनी गांव में हम पहुंचा पा रहे हैं। हैंडपंप खनन काफी नए नए गांव में हुआ है। हितग्राही मूलक शासन की विभिन्न योजनाओं को भी हम सीधे अब जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। शुरू में जो है 1.0 में सिर्फ 5 जिले थे, अब 10 जिले हो गए। रोड कनेक्टिविटी इसमें प्राइमरी जो पहला फोकस रहता है वो रोड कनेक्टिविटी का रहता है, क्योंकि अगर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रोड से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो वो गांव हमेशा कट ऑफ रहेगा। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उन गांव को मेन स्ट्रीम से या मेन जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनसे जोड़ पाए। रोड कनेक्टिविटी, टावर हो गया, विद्युत लाइन भी हमारे नारायणपुर में काफी गांव में पहली बार विद्युतीकरण हुआ है। पहले बार जैसे मसपुर हो गया, गारपा हो गया, पहली बार यहाँ पे विद्युत लाइन गई है। अंदर अंदर के ओरछा ब्लॉक के अंदर के गांव जो थे पहले राशन लेने के लिए ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में आते थे, अब हम वहाँ पे ट्रैक्टर के माध्यम से गांव तक पीडीएस का जो उनकी राशन है वो हम पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी

योजनाएं जो हम पहले कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नक्सल के प्रभाव के होने से नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम लोग रीच आउट कर पा रहे हैं। आंगनवाड़ी जिसमें अंदर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पॉपुलेशन का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे एक आंगनवाड़ी 300 का पॉपुलेशन हो तो बनती है, तो उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं, नए बच्चे जो आंगनवाड़ी से अभी नहीं जुड़ पाए उनको हम आंगनवाड़ी में जोड़ रहे हैं। नारायणपुर ब्लॉक में अभी तक 22 ऐसे नए स्कूल हम लोग खोले हैं जो पहले नक्सल प्रभाव के कारण बंद थे, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हम लोग पहली बार प्रशासन के जाने के वजह से खुली है। तो 22 नए स्कूल खुले हैं, आंगनवाड़ियों में हम लोग ने बच्चों को नए इनरोल किया है, स्कूल्स में हमने बच्चों को नए इनरोल किया है, तो इस तरीके से हम लोग पहुंच पा रहे हैं लोगों तक।

0: बस्तर वनोपज और वनौषधियों के लिए भी विख्यात है। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, चार, शहद और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं। इन्हीं वनों में मौजूद हैं तरह तरह की जड़ी बूटियां और ढेरों वनस्पतियों के अनमोल खजाने। बस्तर की जनजातियां इन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यही वजह है कि वे जल, जंगल और जमीन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: मैं श्रीमती मेनका चंद्राकर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर हूँ। अफेक्टेड है, नक्सली अफेक्टेड है, नक्सल प्रभावित हैं और बुनियादी सुविधाओं से, शासन की योजनाओं से जो की पहुंच से जो दूर हैं ऐसे गांवों को, और शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन गांवों को बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी सुविधाओं से इनको लाभान्वित करना, और शासन की जितनी भी व्यक्तिमूलक योजना है उन सभी का सीधा लाभ इनको पहुंचाना, जैसे कि प्रत्येक का आधार कार्ड हो, प्रत्येक को उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस कनेक्शन मिला हो, इस तरीके से व्यक्तिमूलक एवं समुदाय मूलक सभी योजनाओं से इनको सैचुरेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रथम फेज में इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। फरवरी 2024 के बाद जो बस्तर संभाग के ऐसे नक्सल प्रभावित जिले जहां पर की सुरक्षा जो शिविर है ना, कैंप जो लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा कैंप, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में ताकि एक सुरक्षित वातावरण में शिविर लगाया जाकर इनको सामुदायिक और व्यक्तिमूलक योजनाओं से, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, यहाँ पे जो रहवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्यतः जो है वो वन अधिकार पट्टा से संबंधित सैचुरेशन किया जाएगा। जो भी वहाँ पे ऐसे हितग्राही हैं जो कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका कब्जा है उस क्षेत्र, आवास का कब्जा हो उनके पास या फिर कृषि भूमि का कब्जा हो, तो उनको नियमित तरीके से वनाधिकार पट्टा उनको शासन के द्वारा जारी किया जा सकेगा। और इसके साथ ही इसमें छात्रावास एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ के बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अगर छात्रावास की सुविधा नहीं है तो उनको छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, इसमें स्कॉलरशिप को भी जोड़ा गया है कि उन सभी बच्चों को FRA, बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाए। अभी तक काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं अपने ही अगर विभाग का बताऊं तो अभी तक जो 5 जिले थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, उसमें व्यक्तिगत वनाधिकार के कुल जो है 4988 जो वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया है, सामुदायिक वन अधिकार का 214 पट्टा वितरित किया गया है और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 78 पट्टे जो हैं वो वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावास भी, जहाँ पे छात्रावास की सुविधा तो थी मगर बच्चों की सीट संख्या जो स्वीकृत सीट छात्रावासों में कम थी, तो इसको शासन ने बहुत ही उसमें अपने प्रायोरिटी में लेते हुए वहाँ पे 650 सीटों की वृद्धि की है, सीटों का छात्रावास में स्वीकृत सीटों में वृद्धि करके जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: बस्तर में सार्वजनिक और निजी निवेश के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ सड़कों, पुलों और शिक्षा का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, उसी द्रुत गति से अस्पताल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी विकसित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एमएसएमई और अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य विद्यालय और आईटीआई स्थापित किए गए हैं।

0: बस्तर में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 12,200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे आवागमन और सुरक्षा दोनों ही बेहतर हुए हैं। स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं आरंभ की गई हैं। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और आजीविका मिशन के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो बस्तर के विकास को गति दे रही हैं। इस बारे में बता रहे हैं CEO दंतेवाड़ा श्री जयंत नाहटा।
1: जिसमें व्यक्तिगत जो योजनाएं हैं, इसमें जैसे जॉब कार्ड, पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, लोगों के घर में घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिनको टॉयलेट नहीं मिले उनको टॉयलेट मुहैया कराना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, और ऐसे ही जो सामुदायिक आधारित जो हमारी संरचनाएं हैं, जैसे सभी उन गाँव में सैचुरेशन मोड पर सभी आंगनवाड़ियों को बनवाना, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उनका निर्माण करवाना, राशन कार्ड, प्राइमरी स्कूल, प्लेग्राउंड, सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सबको पहुंचाने और सैचुरेशन करने का नियम देना जो 2.0 है, ये पूरी इसमें योजना है। इसके अंदर दंतेवाड़ा जिले के पहले हमारे दो कैंप्स थे, तो जो भी सिक्योरिटी कैंप्स हमारे नए 2023 अंत और 24 के बाद बने हैं, तो दंतेवाड़ा जिले के अंदर मुलेर में जो कैंप है और जो बासनपुर कैंप है, तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव हैं, तो हमारे 13 गांव जो हैं वो उसमें शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले के अंदर जो जैसा मैंने बताया जितने भी व्यक्तिगत मूलक योजनाएं हैं उसमें बहुत अच्छा पिछले 1-1.5 साल में सैचुरेशन में काम हुआ है, जिसमें सभी नियत के गांवों में 95% से ऊपर आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इसमें आधार कार्ड भी 95-96% के ऊपर दिए जा चुके हैं। इसमें प्लेग्राउंड भी बने हैं। मुलेर में माननीय CM साहब का विजिट भी पिछले साल ही हुआ था, जिसके कारण वहां पे भी विकास में बहुत तेजी आई है। वहां पे रोड बन चुकी है। वहां पे और भी PMGSY और MM मिशन के अंदर हरगढ़ जल भी मुलेर गांव बन चुका है। ऐसे ही बासनपुर के अंदर भी अलग अलग विकास कार्य हुए हैं। सभी तरीके की योजनाओं और सभी तरीके के फंड्स जो हैं उसका उपयोग यहां पे किया गया है। जैसे DMF को यूज किया गया है, सरकार की जितनी भी

योजनाएं चलती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, उसको उसका कन्वर्जेंस किया गया है। और SCA जो फंड होता है उसको भी यूज करते हुए जितनी भी लोगों की डिमांड, तो हमने इसमें जो DMF है उससे जैसे मुलेर का 2 करोड़ से ऊपर का हमने सैंक्शन दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो काफी इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पे बिजली पहुंच गई है, लाइट पहुंच गई है।

0: बस्तर में पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण की भी अपार संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों का विकास और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हर साल किए जाते हैं। बस्तर के किसान, महिला समूह, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इसे संवार रहे हैं, इसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं। बस्तर में बुनियादी जरूरतों के विस्तार के लिए कई काम किए जा रहे हैं।
1: मैं कृपेन तिवारी, सहायक आयुक्त के पद पर जिला कोंडागांव में कार्यरत हूँ। जो बस्तर के वनांचल क्षेत्र है जो नक्सल से प्रभावित थे, बस्तर में 5 जिले थे जिसमें से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया था, और उनको उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को वहां पहुंचाना था और अंतिम छोर तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुगम सुनिश्चित करना था। सरकार ने इस पर अच्छा कार्य किया, पूर्णता और सघनता से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने की ओर सरकार कार्य कर रही है। शासन में भी कोई विशेष विभाग, एक विशेष विभाग नहीं, शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। जैसे राशन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके पोषण को ध्यान देने और बुनियादी स्तर पर उनका विकास करने के लिए बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए, शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता होती है। जनजाति कार्य विभाग की आवश्यकता होती है। वैसे ही विभिन्न विभागों का सभी का साझा सहयोग से ही जनता तक अंतिम रूप से पहुंचा जा सकता है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया है, तो अब ये शासन का है कि उस क्षेत्र को हमने टारगेट लिया हुआ था, फोकस में रखा हुआ था, केंद्र बिंदु में रखा हुआ था, तो उस क्षेत्र की विकास करने के लिए ही ये 2.0 नियत निर्णय का प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही इसके सैचुरेशंस को ही इस वर्ष इसमें लक्ष्य रखा जाएगा और आगामी जैसे ही शासन की निर्णय आएगी वैसे ही इसमें प्रशासन करेगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल है, PDS भी शामिल है और रोड एक्टिविटीज भी इसमें शामिल है। ये जो भी आधारभूत और संरचनाओं से लेकर जो अपने सर्विसेज सेक्टर्स की जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें शामिल है।

0: बस्तर के विकास को लेकर कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब कृषि, कौशल विकास, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बस्तर की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का संकल्प नवा अंजोर विजन के माध्यम से पूरी तीव्रता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज से इस बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत किए हैं। अब आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक एक घर में जाके एक एक लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और उनकी बीमारी का इलाज होगा। और आने वाले समय में निलाना 2.0 वो भी शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर होगा और शिविर में सारे अधिकारी रहेंगे सभी विभाग के, और जो भी योजनाओं से संबंधित राशन कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, वन भूमि का पट्टा की बात है, सब सारा समस्याओं को निपटाते जाएंगे। भी हम लोग अभियान बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाले हैं।

बस्तर संभावनाओं की धरती है। यही कारण है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें एक मजबूत स्तंभ न खड़ा किया जा सके। यहाँ की मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध में बेहद ही अपनापन है। बस्तर सदियों से सबको लुभाता है और बड़ी ही आत्मीयता के साथ यहाँ आने को आमंत्रित भी करता है। छत्तीसगढ़ के विशाल कैनवास पर अब बस्तर की खुशहाली के कई रंग खिल उठे हैं। यहाँ के मांदर की थाप और बांसुरी की तान से विकास के सुर निकल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे जोशो खरोश के साथ बस्तर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 10:30 हुए हैं। आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

साथियों, तापमान सूचना के बाद जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है शाम के 5 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि के 10:00। कार्यक्रम मन भवन आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8:00।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और गर्भावस्था में आवश्यक है टीकाकरण और जांच विषय चर्चा, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आईना क्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विधवाओं के प्रति सम्मान और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विषयक बातचीत। हेलो किसानवाणी सजीव का प्रसारण समय है 7:30। आज के विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लीलाधर साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर। चर्चा के प्रमुख विषय होंगे उन्नत फसल उत्पादन हेतु नर्सरी प्रबंधन व पौध तैयार करने की तकनीक और प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकें और इसके विविध आयाम।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। फिल्मी और गैर फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15।

श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 10:35 हुए हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, नए तराने।

आपने सुना फिल्म आशिकी 2 का गीत, स्वर और संगीत अंकित तिवारी का, गीत संदीप नाथ का। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

0: मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर भी।
0: कार्यक्रम नए तराने में सुनते हैं फिल्म सत्यमेव जयते का गीत वाजिद की आवाज में, गीत दानिश साबरी का, संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म लूडो के गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए

0: स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।
3: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर प्रेम में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिया कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला, डब्लूउल्ला, परवीन और आसमा, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और वली अंसारी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय, मनीष ब्रोनो, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और माल

प्रीति चौधरी, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपवानी, संगीता नेपवानी, आकाश नेपवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता सागर, आयुषी हनी और नेपवानी परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं शबनम। हर बार मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप कागज़ और कलम तैयार रखकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं, और ये कार्यक्रम होता है पोस्ट कार्ड के ज़रिए आपकी भेजी हुई फरमाइशों पर आधारित। तो सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। गुलजार के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कागज़ और कलम आप तैयार रखकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान ही कार्यक्रम का पता हम इसलिए ज़रूर बताते हैं क्योंकि कई बार हम तक कई नए श्रोता भी जुड़ रहे होते हैं और वे ये सोच रहे होते हैं कि वे किस तरह हम तक अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। तो आपको परेशान ज़रा भी नहीं होना है, आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर अपनी फरमाइश लिखनी है और इस पते पर रवाना कर देना है। पता नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन है 497001। तो जल्द से जल्द आप भी अपनी फरमाइशें पोस्ट कार्ड पर लिखकर हम तक रवाना कर दीजिए और सुनते रहिए कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: मरते दम तक। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ के युगल स्वरों में। और इस गीत से पहले आपने सुना था फिल्म आंधी से गीत। ये जो गीत अभी आपने सुना फिल्म मरते दम तक, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और फिल्म आंधी से जो गीत आपने इससे पहले सुना, गुलजार का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत था। आवाज़ें रहीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के आप सभी सदस्य, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

आशा भोसले और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आनंद आश्रम में। इंदिवर के बोल थे, संगीत दिया था श्यामल मित्रा ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया फिल्म दोस्ताना से ये गीत। आवाज़ें एक बार फिर आशा भोसले और किशोर कुमार की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवकुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम परसाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ही रिजवान

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे मेरे सपने में। नीरज के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था SD बर्मन ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे फिल्म आंसू बन गए फूल से ये गीत। गोविंद मुनिस की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। नयन दास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य और कुमारी सानवी संग पूरा परिवार। आप हैं फुलसर वाया कटघोरा चिरमिरी रोड कोरबा छत्तीसगढ़ से। बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म आप आए बहार आई से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई और पूरा माखीजा परिवार। बेरेडी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आप आए बहार आई से ये गीत।

माफ कीजिएगा, ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये है फिल्म आप तो ऐसे न थे से। शब्द रचना निदा फाजली की है, संगीत उषा खन्ना का और आवाज मोहम्मद रफी की।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म आप तो ऐसे न थे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान मिले हीरे, मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2026 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्र

कुरुक्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में छूही पाली गांव के पास लोगों को लेकर जा रहा मालवाहक वाहन पलट गया। हादसे में 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। वहीं आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। इसी के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से लेकर तेज वर्षा और वज्रपात भी हुआ है। वज्रपात की स्थिति प्रदेश में आगामी 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुद्धि ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले। मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की

तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं इन चित्रों

0: में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बसंती। अरे बसी, ओ बसी, कहाँ है तू?
2: अरे बुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल कर, चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं।

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही

0: उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगीं। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे दीदी, क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, ठीक है दीदी, चलिए।

0: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
1: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो वो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
0: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

स्वागत है आपका एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों के कार्यक्रम चयन में। और आज के खास शब्द का अंदाजा शायद आपको हो गया होगा। नहीं हुआ, हम बताए देते हैं। आज का खास शब्द है

मुसाफिर, और आज का ये चयन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त शबनम। दोस्तों, मुसाफिर, आप सोच रहे होंगे कि आंखों के सामने एक मुसाफिर शब्द सुनते ही एक ऐसा इंसान आ जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहा हो, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या सिर्फ रास्तों पर चलने वाला ही मुसाफिर होता है? नहीं, वक्त भी एक मुसाफिर है जो कभी नहीं रुकता। ख्वाब भी मुसाफिर हैं जो आँखों से निकलकर हकीकत की तलाश में भटकते रहते हैं, और हमारी ज़िंदगी भी तो एक सफ़र ही है जिसमें हर दिन एक नया पड़ाव और हर कल एक नई मंजिल लेकर आता है। इसीलिए ये गीत भी कुछ ऐसा ही है, आदमी मुसाफिर है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आपने सुना ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और रास्ते में कई यादें इस तरह छोड़ जाता है। मुसाफिर होने का सबसे बड़ा सौंदर्य, या यूं कहें सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। नई राहें, नए लोग, नए अनुभव और नई सीख। अगर सफ़र न हो तो कहानियां कहां से बनेंगी, और अगर रास्ते न हो तो मंजिलों की अहमियत कौन समझेगा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम चयन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबनम और आज के चयन कार्यक्रम में आज का खास शब्द हमने चुना है मुसाफिर। दोस्तों, हर मुसाफिर की घड़ी में एक ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सारी कठिनाई हैं, लेकिन वही मुसाफिर आगे चलकर महसूस करता है कि सफ़र की कठिनाइयां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज हर नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100

0: 2 मेगाहर्ट्ज में भी एलाहदे सुन सकत है।
1: हाँ, अबे तो शुरू होएगी सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम, खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन, और आज का खास शब्द है मुसाफिर। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। दोस्तों, कई बार मुसाफिर अकेला चलता है, लेकिन उसका हौसला उसके साथ चलता है। कई बार राहें सुनसान होती हैं, लेकिन उम्मीद उसके कदमों की आहट बन जाती है।

मुसाफिर को घर ही आना है। श्रोताओं, चयन कार्यक्रम में आज का जो शब्द हमने लिया है वो है मुसाफिर। तो चलिए, अब हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और अपने भीतर के मुसाफिर को आप भी हम भी मिलकर सलाम करते चलें, जो गिरकर भी उठता है, थककर भी चलता है, और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ

तो श्रोताओं, आज के चयन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि आज आपने जिन फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में सुने वे थीं अपनापन, गदर एक प्रेम कथा, परिचय, फराज और तीसरी कसम। आवाज़ें रहीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, उदित नारायण, प्रीति उत्तम, किशोर कुमार, विद्या गोपाल, मन्ना रे और साथी। तो कैसा लगा आपको आज का चयन कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा और अब मुझे यानी शबनम को दीजिए कार्यक्रम चयन से इजाज़त। अभी आप सुन रहे थे एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम चयन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब

0: राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन या

0: प्रदान दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है सब्जियों की लाभकारी खेती।
2: पर्यावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी सामान्य से कम वर्षा तो कभी अधिक, कभी ठंड तो कभी बहुत अधिक तापमान, देर से ठंड पड़ना, जल्दी गर्मी आ जाना इत्यादि बदलते परिवेश के मुख्य लक्षण हैं। ऐसी परिस्थिति में सब्जियों की खेती सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। खुले वातावरण में खेती करने पर फसल रोग, व्याधि, कीड़े मकोड़े, ठंड गर्मी, वर्षा तुषार, ओला जैसे अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार बदलते परिवेश में सब्जियों की खेती करना एक जटिल समस्या बनती जा रही है। परिणाम स्वरूप पैदावार कम होने से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, खीरा, खरबूजा, बैंगन इत्यादि की खेती बदलते पर्यावरण, बीमारी व कीड़ों से काफ़ी प्रभावित हो रही। ऐसी इस परिस्थिति में सब्जियों की खेती नियंत्रित वातावरण में करना एक विकल्प बन सकता है। यहाँ नियंत्रित वातावरण से अभिप्राय है सब्जियों की खेती ऐसी दशा में करना जहाँ रोग, व्याधि, कीड़े मकोड़े, ठंड गर्मी, वर्षा, ओला, कोहरा इत्यादि से सब्जी फसल की सुरक्षा हो सके, या यूँ कहा जाए कि पर्यावरण कारकों से सुरक्षा के लिए जहाँ हम सब्जियों की खेती करते हैं नियंत्रित वातावरण या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है। व्याधियों से बचाव के लिए किसान भाई नित नई दवाओं और नए हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके प्रयोग से आज हम तरह तरह के जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और असमय ही काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। उपरोक्त बचाव के लिए हम इन सब्जियों का आवश्यकता अनुसार वातावरण प्रदान करके अधिक पैदावार व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों जैसे ठंडा, गर्मी, वर्षा, बीमारी व कीड़ों का प्रकोप में सब्जियों की लाभप्रद खेती संभव है। गुणवत्ता युक्त सब्जियों के पैदावार से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, पूरे वर्ष भर सब्जियों की उपलब्धता समान रूप से संभव, बेमौसम खेती की अपार संभावनाएं, कीड़े व बीमारियों का समुचित नियंत्रण, लागत का सही उपयोग, खाद, बीज, दवा का समुचित प्रबंधन, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी छोटी जोत वाले कृषकों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। शहरी क्षेत्र के आसपास सिमटती भूमि में

0: इस प्रकार की खेती की अपार संभावनाएं हैं। शिमला मिर्च की खेती करना तो पूर्वांचल में एक अभिशाप बनता जा रहा है, अतः शिमला मिर्च की खेती कम लागत से बने नेट हाउस में करें, आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के किसान भाई अर्ध नियंत्रित दशा में शिमला मिर्च के अलावा अनेकों सब्जियों की खेती करके मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती से दोगुना लाभ प्राप्त करने एवं सामान्य से एक एक माह पहले फलन प्राप्त करने के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज की बुआई थैलियों में तैयार करके पौध प्राप्त की जा सकती है। अधिक उत्पादन देने वाले और महंगी सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा इत्यादि की खेती जालीदार घर में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथ ही साथ जाड़े के दिनों में गर्मी के मौसम की सब्जियों जैसे तरबूजा, खरबूज, खीरा, लौकी, कुम्हड़ा, कद्दू इत्यादि बिना ऊर्जा खर्च किए, बिजली के बिना पैदा किया जा सकता है। सब्जियों की खेती के लिए नहीं बल्कि कई तरह के वातावरण नियंत्रक हैं। ग्रीन हाउस में आवश्यक वातावरण जैसे तापमान, प्रकाश, तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि शत प्रतिशत पौधों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसमें टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, खरबूजा, बैंगन इत्यादि सब्जियों की खेती सुगमतापूर्वक की जाती है। पॉली हाउस में कूलर की तरह पैड व फैन पद्धति होता है, जिसमें सामान्य से 5 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मुख्य रूप से शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा इत्यादि की खेती की जा सकती है। टनल हाउस, टनल बड़ा, छोटा व मध्यम आकार के अलग अलग होते हैं। इसमें शरद ऋतु दिसंबर जनवरी माह में अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती हेतु पॉलीथीन की थैलियों में पौध तैयार किए जा सकते हैं। शरद ऋतु कद्दू वर्गीय सब्जियों, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन इत्यादि की खेती भी की जा सकती है। नेट हाउस के माध्यम से महीन जाली यानी 1 इंच में 40 धागे में सफ़ेद मक्खी तथा अन्य कीड़ों से नियंत्रण कर टमाटर, मिर्च व शिमला मिर्च, बैंगन, करेला इत्यादि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। छायाधार घर के तहत तापमान नियंत्रित करने के लिए अप्रैल से सितंबर तक पौध नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। मल्च ठंड के समय मिट्टी का तापमान पौधों के लिए बनाए सामान्य रखने तथा खरपतवार नियंत्रित करने एवं पानी की ह्रास क्षति को रोकने के लिए जमीन की सतह पर फसलों की जड़ों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है।
1: सब्जियों की लाभकारी खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। बहनों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

स्वागत है बहनों आज के कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूं सोफिया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों जब भी प्रेम शब्द का जिक्र होता है तो मन के आकाश पर सबसे पहले माँ की छवि उभर आती है। वह प्रेम जो निस्वार्थ है, निष्कलंक है और जिसकी गहराई को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। माँ का प्रेम वह अनमोल एहसास है जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे साथ जुड़ जाता है और जीवन के हर मोड़ पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब माँ अपने भीतर एक नई जिंदगी की हलचल महसूस करती है तब उसके सपनों में उस बच्चे की मुस्कान, उसकी किलकारियाँ और उसका सुनहरा भविष्य बस जाता है। लेकिन इन सपनों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए केवल प्यार ही नहीं बहनों बल्कि सही देखभाल, समय पर जांच और टीकाकरण भी उतना ही जरूरी है। बहनों गर्भावस्था केवल महिला की नहीं बल्कि उसे उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। छोटी छोटी सावधानियां माँ और बच्चे दोनों के अनमोल जीवन को सुरक्षित बनाती हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीयन बेहद ज़रूरी है। इन जांच के माध्यम से माँ का रक्तचाप, वजन, खून की मात्रा, शुगर का स्तर और बच्चे की सही बढ़त की जानकारी मिलती रहती है। यदि किसी तरह की समस्या, खून की कमी या कोई भी अन्य परेशानी हो तो उसका उपचार समय पर किया जा सकता है। साथ ही बहनों टीकाकरण से माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। विशेष रूप से टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके माँ और नवजात बच्चे को संक्रमण से

0: सुरक्षा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं बहनों कि कोई परेशानी नहीं है, इसलिए जांच और टीके की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहनों कई स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके लक्षण शुरू में दिखाई नहीं देते, नियमित जांच से ही उन्हें समय पर पहचान सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ भी नियमित रूप से लेना चाहिए। ये खून की कमी दूर करते हैं और बच्चे के स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। हमारे परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बहनों, माँ बनना जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस सफर को सुरक्षित बनाने के लिए समय पर टीकाकरण, नियमित जांच, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है, ताकि एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव रख सके।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, आज है 23 जून और 23 जून को हर वर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आज हम ओलंपिक दिवस मना रहे हैं, जो खेल भावना, एकता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह दिन स्वस्थ जीवन शैली के लिए, खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। ओलंपिक केवल पदक जीतने का नहीं, बल्कि प्रयास, अनुशासन और मित्रता का उत्सव है। तो आइए इस ओलंपिक दिवस पर हम खेलों को अपनाकर अपनी जीवन शैली स्वस्थ बनाएं। बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्रम आईना की ओर, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित क्रम आईना।

आज की आईना के इस क्रम में स्वागत है बहनों। बहनों, कभी घर की चौखट तक सीमित समझी जाने वाली नारी आज अपने हौसलों और मेहनत से सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। उसने जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाया और अपने सपनों को भी उड़ान दी। संघर्षों की तपती धूप में तपकर वह और अधिक मजबूत बनी है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां केवल उनकी जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति का प्रतीक है। बहनों, विफलता ही सफलता की सीढ़ी है। यदि एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिले तो विफलता से घबराए नहीं। आपके लिए कोई अन्य अवसर जरूर होंगे जहां आप सफल हो सकते हैं। इसलिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखें। यह कहना है शहर की एक सिक्योरिटी एजेंसी की फाउंडर दीपमाला सोनकर का। दीपमाला महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत कर पुरुषों के वर्चस्व वाले सिक्योरिटी सर्विस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दीपमाला का कहना है कि उन्हें बचपन से ही साहसिक खेलों में लगाव रहा है। उन्होंने कक्षा 8वीं में पढ़ते हुए जूडो खेलना शुरू किया। पिता ने 4 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। पिता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे कहती हैं कि एक कार्यक्रम में महिला बाउंसर को देखकर विचार आया कि एक ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी खोलूं जहां महिलाओं को जॉब दे सकूं। एजेंसी शुरू करने से पहले इस क्षेत्र की बारीकियां सीखी। वे कहती हैं कि जब उन्होंने यह काम शुरू किया तो लोगों ने टोका कि यह पुरुषों का क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला कमजोर नहीं पड़ने दिया। दीपमाला कहती हैं कि उन्होंने जूडो और कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं। मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल में 4 साल तक ट्रेनिंग ली और खेल में भी

सड़क किनारे गरीब बेसहारा बीमार जख्मी लोगों को देखकर अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन इंदौर की भाग्यश्री खरखड़िया इन लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भाग्यश्री जब इन लोगों को देखती हैं तो खुद को रोक नहीं पाती और सबसे पहले उन लोगों के खाने और कपड़ों की व्यवस्था करती हैं। असहाय लोगों का इलाज करवाने के साथ ही भाग्यश्री

सड़क पर मृत लोगों का दाह कर्म की व्यवस्था भी करती हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि लोगों की मदद करने के लिए उनके पिता और पति ने हमेशा साथ दिया। भाग्यश्री एक बेटे की माँ भी हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए वह लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भाग्यश्री कई लावारिस लाशों का दाह संस्कार करवा चुकी हैं। भाग्यश्री कहती हैं, जब उन्हें लावारिस लाश का पता चलता है और उसके आसपास के लोगों से मृत के धर्म की जानकारी मिलती है, तो वह उसी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाती हैं। वह कहती हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें टोका कि महिलाएं शमशान नहीं जाती, लेकिन फिर लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। उनके इस जज्बे को कई संस्थाओं की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है।

गीता सलीस ने रंगीन दुनिया में अपने सपने बुनने शुरू ही किए थे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक दुर्लभ बीमारी के कारण अचानक से जीवन में अंधेरा छा गया। तब गीता 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 15 साल की उम्र में गीता ने इस सच्चाई को स्वीकारा और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हुए 39 साल की उम्र में सफल ऑनलाइन फूड वेंचर चला रही हैं। पढ़ाई में रुचि होने के कारण गीता ने ब्रेल लिपि सीखी और स्नातक की पढ़ाई शुरू की। गीता ने शादी के बाद पति सलीस कुमार के साथ मिलकर शहर में एक छोटा सा ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें सब्जियों सहित ऑर्गेनिक सामग्री का उपयोग करके खाना बनाया करती थी। गीता का कहना है कि रेस्टोरेंट किराए की जगह व चलने के कारण कुछ समय बाद बंद करना पड़ा। बच्चों की परवरिश के बाद काम से कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किए, लेकिन विकलांगता की वजह से नौकरी नहीं मिली। फिर पति ने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। गीता कहती हैं कि लॉकडाउन में अपना फूड स्टार्टअप शुरू कर घर का बना घी, नारियल का दूध और गुड़ से सुपर फूड कुर्क बनाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। आज गीता अपने बिजनेस से हर महीने 50,000 रुपए तक कमा लेती हैं। बहनों, आज के आईना में बस इतना ही।

आईना के बाद अब सफ़ेद बहनों आपके मेल का। ये पहला मेल है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा रानी वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनेश्वरी वर्मा और कुमारी पायल वर्मा का। पोटिया कला दुर्ग से सुजाता, संजय साहू और सीमा साहू। और जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, कौशल गोस्वामी, रिंकी गोस्वामी और उमा तिवारी का। इन्होंने लिखा है कि हम ये कार्यक्रम हमेशा सुनते हैं। कार्यक्रम में दी जाने वाली विभिन्न जानकारियों के साथ आप सभी की बातचीत इन्हें बेहद पसंद आती है। प्रस्तुति हमेशा रोचक और सुंदर होती है। मैंने आप सभी कार्यक्रम इतने ध्यान से सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने महेंद्र कपूर के स्वर में गीत सुनना चाहा है, सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म हमराज का बेहद खूबसूरत सा गीत, जिसे स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने।

मैनो ये अगला मेल है रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर और दिनेश वर्मा का। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा का। और कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से है डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर। और बन बघेरा राजनांदगांव से आशा सारवा, अंजलि, करीना सारवा, नीरज, नीलेश और साथ में योगेश सारवा। किकिरमेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से रुक्मणी शर्मा और संतोष शर्मा। आप सभी ने फिल्म जानी दुश्मन के गीत की फरमाइश की है। गीत को स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

ये अगला मेल है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल का। दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल का। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, दीपेश और शिवांश वर्मा का। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आपने फिल्म नया दौर का गीत सुनना चाहा है। गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। यवतमाल विदर्भ से श्रीमती अनिता बाई खड़से और प्रियंका खड़से। आप श्रोता बहनों ने फिल्म असली नकली का गीत सुनना चाहा है और इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

बहनों, ये अगला मेल है ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से भनिता साहू, सरिता साहू, पूर्णिमा साहू और ओम कुमारी साहू का। ग्राम कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का। सुनते हैं इन सब की पसंद पर ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म है चिराग।

मैंने इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने मेल के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है gharangan@gmail.com। और अब कार्यक्रम से दीजिए मुझे विदा। आप सभी को सोफिया का नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

फिल्म हिना से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, आरती सुरलकर, महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंत राय, पी एस नेहवाकर, तुषार करांगले, रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, इब्राहिम, सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इनके परिवार के सभी सदस्य, सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खेलावन सिंह पैंकरा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश, अर्जुन और टुकटुक, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और इनके परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कयामत से कयामत तक से। मजरू के बोल हैं, संगीत आनंद मिलिंद का, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की। और इस गीत के लिए फरमाइशें आई हैं आप सभी से। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव लोहगढ़ ठाकुरा से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह संग शुभदीप सिंह। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। रघुवीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। तेलंगाना भोईंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। तो सुरों की इस गूंज में आज आपकी पसंद के रंग घुले हुए हैं। सुन लीजिए ये एक और प्यारा सा गीत।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:56 और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शबनम। डिजिटल दौर में आपके ये ईमेल्स श्रोताओं जैसे पुराने खतों की ताज़ा महक होते हैं। आपने अपनी फरमाइशें हम तक अपने मेल के ज़रिए भेजी हुई हैं और हम शामिल कर रहे हैं एक के बाद एक आपकी पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सरफरोश से। समीर के बोल हैं, संगीत जतिन ललित का, आवाज़ें आमिर खान और अलका याग्निक की, और इस गीत के लिए फरमाइशें मिली आप सभी से।

आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। सिद्मा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश भरोस पैकरा और नरेश सिंह। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान आप हैं बाबा कुटी रायगढ़ से। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके। बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपोरानी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सरफरोश से ये गीत।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और आपके साथ हूं मैं शबनम, आपकी फरमाइशों के साथ हूं मैं। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म डुप्लीकेट से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाज़ कुमार सानू की, और फरमाइश आप सभी की। गुजरात गांधीग्राम से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कोसम कलावती और इनके परिवार के सभी सदस्य, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे।

0: दिलों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और आपके साथ हूं मैं शबनम, आपकी फरमाइशों के साथ हूं मैं। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म डुप्लीकेट से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाज़ कुमार सानू की, और फरमाइश आप सभी की। गुजरात गांधीग्राम से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कोसम कलावती और इनके परिवार के सभी सदस्य, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, आप हैं शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रेशु, वी चैतन्य, अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू, आप हैं धनोरा बस्तर छत्तीसगढ़ से, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा, गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम और परिवार के सभी सदस्य, अनूप सिंह आप हैं झालावाड़ राजस्थान से, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री, अंजलि और बाला साहेब, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, संजय कुमार साहू, शशांक साहू आप हैं पोटिया कला दुर्ग से, शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, अकोला से सुशीला देवी मंद्रोकर, सदानंद मंद्रोकर, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म डुप्लीकेट से ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म दिल तो पागल है से ये गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत उत्तम सिंह का, आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। बुल्ढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल और चेतन मनवर, साथ ही रोशनी और बेबी प्रियांशी, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश, शारदा, लकी, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राम राजवाड़े, नूर साय, हीरालाल, कविता और आरती मरकाम, राम रतन साहू, मनोज कुमार साहू, संतोष कुमार, हेमंत दास, घनश्याम देवांगन, मनोज कुमार जैन, रामलाल साहू, देवेंद्र विश्वकर्मा, नरेश कुमार, दिलीप कुमार और माला पांडे संग ममता ठाकुर, सावित्री निषाद, आप हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से, ग्राम सिरकोंतगा महादेव पारा पोस्ट लपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान, लल्लू, बल्लू, घनू, अमित, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े, खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब अलमास, मोइन छोटू, शंकरलाल, साफिया और मोहम्मद हसनैन पवार, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दिल तो पागल है से ये गीत।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के गाए फिल्म दिल तो पागल है के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।

0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से NAFIX.IN, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की

0: 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड

0: में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं और अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की गई इस गजल से।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, आवाज़ है लकी अली की।

लकी अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गज़ल, कलाम है बशीर बद्र का, आवाज़ चंदन दास की। खुशबू की तरह आया वो तेज़ हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज़ हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

चंदन दास को अभी आप सुन रहे थे इस गज़ल में। गीत गंधा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनेंगे आप एक गीत, आवाज़ है अभिजीत की।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में ये गीत। गीत गंधा कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए आबिदा परवीन को।

आबिदा परवीन की गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। के 3 बजे हैं। सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। शाम 6:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में आप सुनेंगे सादरी और सरगुजिया लोकगीत। कलाकार हैं घसिया लकड़ा और रामलाल राजवाड़े। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी पेश करेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय है शाम 7:30। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का एक और फरमाइशी कार्यक्रम ई मेल की गूंज रात 10 बजे और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन पेश करेंगे रात 10:30 पर। ये तो थे आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको ये भी बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:02:40 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, इसी के साथ हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सभा की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: शिवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पिंडारी, कोटरा

0: ही कोल्हुआ भगवानपुर नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाप, गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 134 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और फिल्मी गीतों से सजा भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं विवाह फिल्म का ये गीत। आवाज़ है पमेला जैन की, संगीत निर्देशन एवं गीतकार हैं रविंद्र जैन।

विवाह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम भजन संध्या को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सचेत एवं परंपरा टंडन की आवाज़ में फिल्म आदि पुरुष का ये गीत। गीतकार हैं मनोज मंतसर।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन एवं गीतकार हैं रविंद्र जैन।

कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए सुनिए अगला गीत जूली फिल्म से। आवाज़ है आशा भोसले एवं उषा मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए दिल्ली 6 फिल्म का ये गीत। आवाज है रेखा भारद्वाज, किशोरी एवं सुजाता मजुमदार के। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

कार्यक्रम भजन संध्या की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं खानदान फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी एवं साथियों की, संगीत निर्देशन है रवि का और गीतकार हैं राजेंद्र किशन।

मोहम्मद रफ़ी एवं साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त चंचला यादव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है युवाओं की, उनके सपनों की, उनके जुनून की और उनके हौसलों की। साथियों जरा सोचिए, अगर जीवन एक खेल है तो खेल भावना उसकी सबसे बड़ी जीत है। 23 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाती है। यह दिन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मेहनत, अनुशासन और हार न मानने की सोच में विश्वास रखता है। ओलंपिक हमें सिखाता है कि असली जीत सिर्फ मेडल जीतने में नहीं बल्कि मैदान में उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में है, क्योंकि कभी कभी हार भी हमें वो सिखा जाती है जो जीत नहीं सिखा पाती। दोस्तों, आज का युवा ऊर्जा से भरपूर है, उसके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी। लेकिन खेल हमें सिर्फ शारीरिक रूप से फिट नहीं बनाते बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। जब हम टीम में खेलते हैं तो सहयोग सीखते हैं, हारते हैं तो धैर्य सीखते हैं और जीतते हैं तो विनम्रता सीखते हैं। आज मोबाइल की स्क्रीन और सोशल मीडिया के दौर में मैदान थोड़े खाली जरूर नज़र आते हैं, लेकिन याद रखिए, खेल के मैदान में बिताया गया एक घंटा मोबाइल पर बिताए गए कई घंटों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि वहीं से बनता है आत्मविश्वास, नेतृत्व और संघर्ष करने का जज्बा। भारत के युवा खिलाड़ियों ने भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, कुश्ती या एथलेटिक्स। हमारे खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना छोटा नहीं होता। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमें यह संदेश देता है कि खेल को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन थोड़ा दौड़िए, थोड़ा खेलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। दोस्तों, एक बात तय कर लीजिए कि खेलेंगे भी, खिलाएंगे भी, जीतेंगे भी और दूसरों की जीत पर तालियां भी बजाएंगे। यही है सच्ची खेल भावना। इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम चैंपियन की ओर, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे युवा साथी घनश्याम मैत्री।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है आपके अपने क्रम चैंपियन में। मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार श्रोता साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रम चैंपियन में हम किसी चैंपियन से करते हैं बातचीत, और उसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है एक चैंपियन। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है साक्षी आपका क्रम चैंपियन में। साक्षी, फुटबॉल की दुनिया तक आपका सफर कैसे शुरू हुआ और इस खेल ने आपको किस तरह से आकर्षित किया?
1: मेरी फुटबॉल की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। मुझे इस खेल के बारे में सबसे पहले मेरे कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर से पता चला था। पिछले साल उन्होंने मुझे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप, जो की गुजरात के पारुल यूनिवर्सिटी में होने वाला था, तो उसका ट्रायल यहाँ रखा गया था, तो उसके बारे में बताया था। शुरुआत में मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे करीब से देखा और प्रैक्टिस की, तब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर यही इंटरेस्ट पैशन में बदल गया और आज फुटबॉल मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो साक्षी, जब आपने पहली बार फुटबॉल खेला था, तब आपके मन में क्या चल रहा था? क्या उस समय आपने सोचा था कि आप इसे गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे?
1: जब मैंने पहली बार फुटबॉल को खेला था, तब तो मेरे मन में एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन स्टार्टिंग था तो थोड़ा नर्वसनेस भी थी। उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अचानक से किसी गेम के बारे में जानूंगी और उसको ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक एक ही बार लेकर चली जाऊंगी। पिछले साल ही मैंने पहला अपना टूर्नामेंट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जो कि वडोदरा में हुआ था गुजरात में, वहां खेला था।
0: जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। कई लोग क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी के बारे में जानते हैं, लेकिन फुटबॉल उसके अपेक्षाकृत बहुत कम चर्चित खेल है। तो इसकी कौन सी विशेषता आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है?
1: मैं भी पहले वैसे तो फुटबॉल, हॉकी, ये सब गेम्स हो गए, उनके बारे में जानती थी, तो जब मैंने फुटबॉल को पहली बार देखा फिर खेला, तो फुटबॉल की सबसे खास बात मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन लगती है। ये गेम देखने में आसान लगता है, लेकिन इसमें फोकस और मेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। इस गेम में मुझे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और प्रेशर हैंडल करना सिखाया है। मुझे लगता है कि यही चीजें इसे दूसरे खेलों से अलग बनाती हैं।
0: तो साक्षी जी, किसी भी खिलाड़ी की यात्रा आसान नहीं होती है, ये आपको भी पता है। तो आप जब फुटबॉल खेल रहे थे, तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आईं और उनका सामना आपने कैसे किया?
1: हर खिलाड़ी की तरह मेरे सामने भी कई चैलेंजेस आए। स्टडीज और स्पोर्ट्स को एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस के दौरान फिजिकल टायर्डनेस और मेंटल प्रेशर भी होता है, लेकिन मैंने अपना पॉजिटिव सोच रखी और लगातार मेहनत की। मेरे कोचेस, फैमिलीज और कॉलेज का भी मुझे सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है, तो इस वजह से पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी मैंने मैनेज अभी तक तो कर रही हूँ।
0: जब वो किसी चीज को खेलता है तो

0: उस खिलाड़ी के जीवन में उस खेल के प्रति एक प्रशिक्षण दिनचर्या रहता है, तो आपने अपना प्रशिक्षण और दिनचर्या किस प्रकार से रखा?
1: फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर तो नहीं, लेकिन कम से कम जब टूर्नामेंट रहते हैं उसके एक महीने पहले या दो महीने पहले से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे रेगुलर दिनचर्या में मेरे फिजिकल एक्सरसाइज ये तो रहता ही है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज साथ ही सुबह के टाइमिंग में कम से कम 3 से 4 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस हम लोगों की रहती है। उसके बाद हिटिंग एक्यूरेसी, फोकस और कंट्रोल पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाए वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी जो है इस गेम के प्रति वो बढ़ता जाए।
0: जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इस खेल में बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है और इसमें पेशेंस की भी बहुत भूमिका होती है। तो साक्षी, जो वुडबॉल है उसमें एकाग्रता और धैर्य की बड़ी भूमिका है, तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुटबॉल में पेशेंस और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब भी प्रेशर होता है तो खुद को काम रखने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और पूरा फोकस गेम पर रखती हूँ। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और साथ ही जब आपको आपके पीछे खड़े जो भी फैमिली, कॉलेज, टीममेट्स और कोचेस का जो सपोर्ट रहता है वो हमको मेंटली प्रिपेयर करता है और जो भी प्रेशर रहता है उससे बाहर निकालता है।
0: तो जब आपने ये खेल चालू किया तब आपका जो परिवार है वो किस प्रकार से आपके साथ थे?
1: मेरा परिवार स्पोर्ट्स में ही नहीं, बाकी वो स्टडीज हो या कोई भी एक्टिविटीज हो उसमें शुरू से ही मुझे आगे भेजने के लिए और सपोर्ट शुरू से ही मुझे मिलता है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज तक मैंने 3 टूर्नामेंट अभी तक खेले हैं, जिसमें फर्स्ट में बस पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अभी इस साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में हुआ था, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो वहां मैंने स्ट्रोक मिक्स डबल इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले की बात है, नेशनल टूर्नामेंट जो कि हमारे रायपुर में कृष्णा ग्लोबल विकास स्कूल में हुआ था, तो वहां हमें टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, जो कि सिर्फ मेरे अकेले की जीत नहीं है, इसके पीछे मेरे फैमिली का सपोर्ट, कोचेस का और कॉलेज का भी सपोर्ट रहा है।
0: तो आप बहुत जगह खेलने गई थी, तो आप जब कॉम्पिटिशन कर रही थी तो उसके आधार पर अनुभव कैसा था आपका?
1: जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने पहला टूर्नामेंट पारुल यूनिवर्सिटी में खेला था, तो वहाँ पहली बार इतने बड़े लेवल पर अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस टूर्नामेंट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और बहुत कुछ सिखाया। हर कॉम्पिटिशन मुझे कुछ नया सीखने का मौका देता है, चाहे वो टेक्निक हो, डिसिप्लिन हो या प्रेशर हैंडल करना।
0: आपको क्या लगता है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य कैसा है और इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
1: मुझे लगता है कि जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे वो उतना पता नहीं था, लेकिन अभी इन 1 सालों के अंदर मैंने जो देख रही हूँ फुटबॉल का भविष्य, तो वो धीरे धीरे लोगों को काफी पता चल रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो फुटबॉल का भविष्य भारत में बहुत आगे जाकर अच्छा होगा। धीरे धीरे स्पोर्ट्स के बारे में लोग जान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी इसमें बहुत अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। अगर कॉलेज, स्कूल्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इसे ज्यादा प्रमोट करे तो आने वाले समय में भारत इस खेल में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
0: साक्षी जी, ये जो वुडबॉल तो आपका प्रोफेशनल हो गया, लेकिन आप जब खाली रहती हैं, खाली समय में रहती हैं, तो आपको और क्या क्या करना पसंद है, और इसके अलावा और कौन कौन से आप स्पोर्ट खेलना पसंद करती हैं?
1: फुटबॉल के अलावा मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स के एक दो, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये खेलना स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद है। और साथ ही जब मैं घर पे अकेले रहती हूँ तो पेंटिंग करना हो गया, लोगों से बात करना और समाज सेवा, जैसे कि आप NSS के बारे में जानते होंगे तो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बीच बीच में मुझे मौका मिलते रहता है कि मैं लोगों से मिलूं और बातचीत करूं, उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है लोगों से मिलकर।
0: ये तो बात हो गई खेलों से और खेलों से जुड़ी और आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल थे। तो आज के युवा जो खेल की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जो युवा फुटबॉल से जुड़ना चाहेंगे या फिर करियर बनाना चाहेंगे, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मैं आज के युवाओं को, सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि आप फुटबॉल से ही जुड़ें, आपको जिस भी गेम में इंटरेस्ट हो आप उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है, पढ़ाई में भी फोकस, कॉन्सेंट्रेशन ये सबकी जरूरत होती है, तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें फोकस, पेशेंस, डिसिप्लिन सब चीज होता है, तो हर युवा को पढ़ाई के साथ साथ किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जुड़े रहना चाहिए, और स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क सिखाता है। अगर मेहनत, पेशेंस और डेडिकेशन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।
0: अगर आपको अपने पूरे खेल सफर को एक संदेश या एक पंक्ति में व्यक्त करना हो तो आप हमारे श्रोताओं से

0: तो क्या कहना चाहेंगे?
1: अगर मुझे अपने खेल सफर को एक पंक्ति में कहना हो तो मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ शुरू हुई छोटी सी कोशिश ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है।
0: वाकई आपकी बातें न केवल खेल प्रेमियों बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेंगी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत की, अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी के साथ आज का क्रम चैंपियन बस यहीं तक, तो दीजिए अपने दोस्त घनश्याम को इजाजत। नमस्कार।

साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में फिल्म रॉकस्टार का खूबसूरत सा गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं एआर रहमान।

दोस्तों अगला गीत सुनते हैं आतिफ असलम चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में। फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से। गीत दिया है इरशाद कामिल ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

दोस्तों, उम्मीद है आज का यह सफ़र आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ युववाणी में, और कल सुनेंगे आप एक नए विषय पर युवा सोच के साथ क्रम अचीवर्स। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की युववाणी से अपनी दोस्त चंचला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु। विचार बिंदु में आज का विषय है भरोसा। संकलन एवं वाचन स्वर हैं पद्मनाभ के।
1: जब हम सुबह उठते हैं तो बिना किसी डर के जमीन पर कदम रखते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि धरती हमारा बोझ संभाल लेगी। हम रात को आंखें मूंद कर सो जाते हैं इस भरोसे के साथ कि कल एक नया सवेरा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया से भरोसा शब्द गायब हो जाए तो क्या होगा? शायद जिंदगी पूरी तरह थम जाएगी। भरोसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सके, न ही ये कोई ऐसी गणितीय समीकरण है जिसे जबरन सिद्ध किया जा सके। भरोसा तो आत्मा की एक अदृश्य डोर है जो दो इंसानों को, दो विचारों को और पूरे समाज को आपस में जोड़कर रखती है। किसी ने सच्ची कहा है कि भरोसा हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता लेकिन जब ये न हो तो दम

0: नहीं है जिसे बाजार में खरीदा जा सके, न ही ये कोई ऐसी गणितीय समीकरण है जिसे जबरन सिद्ध किया जा सके। भरोसा तो आत्मा की एक अदृश्य डोर है जो दो इंसानों को, दो विचारों को और पूरे समाज को आपस में जोड़कर रखती है। किसी ने सच्ची कहा है कि भरोसा हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता लेकिन जब ये न हो तो दम घुटने लगता है। जब एक छोटा बच्चा हवा में उछाला जाता है तो वह रोता नहीं बल्कि खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उछालने वाले हाथ उसे गिरने नहीं देंगे। यही मासूमियत और निष्कपट विश्वास असल में भरोसा है। भरोसे की सबसे बड़ी खूबी और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसे कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इसे गंवाने में सिर्फ एक पल, एक गलतफहमी या एक झूठ काफी होता है। ये बात उस समय की है जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के अभियान पर था। रास्ते में वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और सेना के बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज करने से डर रहे थे, क्योंकि अगर राजा को कुछ हो जाता तो उनकी जान चली जाती। ऐसे समय में सिकंदर के बचपन के मित्र और उनके सबसे भरोसेमंद राजवैद्य फिलिप आ गया है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी दवा तैयार कर रहा हूं जिससे सम्राट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस मुझे 3 दिन का समय चाहिए। दवा तैयार होने ही वाली थी तभी सिकंदर के सेनापति पारमेनियो का एक गुप्त पत्र सिकंदर के पास पहुंचा। उस पत्र में लिखा था, सम्राट सावधान रहें, आपके राजवैद्य फिलिप को दुश्मन राजा ने बहुत बड़ी रिश्वत दी है, वह दवा के बहाने आपको जहर देकर मारना चाहता है। सिकंदर ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराया और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। अगले दिन राजवैद्य फिलिप दवा का प्याला लेकर सिकंदर के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने वो प्याला सिकंदर की ओर बढ़ाया। सिकंदर ने एक हाथ से दवा का प्याला लिया और दूसरे हाथ से तकिए के नीचे छिपा वह गुप्त पत्र निकालकर फिलिप की ओर बढ़ा दिया। सिकंदर ने कहा, फिलिप इस पत्र को पढ़ो। जैसे ही फिलिप ने वह पत्र पढ़ा उसके पैर कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डर कर सिकंदर से कहा, सम्राट यह झूठ है, सरासर साजिश है, आप इस दवा को। फिलिप अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले सिकंदर ने फिलिप की आंखों में आंखें डाली और बिना एक पल गंवाए एक ही सांस में वह पूरी दवा पी गए। कक्ष में सन्नाटा छा गया, सब डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ घंटों में दवा ने असर दिखाया और सिकंदर का बुखार उतर गया, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाद में सिकंदर ने फिलिप से कहा, जब मैंने यह पत्र पढ़ा तो मुझे अपनी सेनापति की बात पर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बिताए बचपन और तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा था। अगर मैं दवा पीने से हिचकिचा जाता तो भले ही जहर मेरा कुछ न बिगाड़ता, लेकिन शक हमारे बरसों पुराने भरोसों को हमेशा के लिए मार देता। चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही मानसिक शांति के लिए किसी पर विश्वास करना जरूरी है। अगर हम हर समय हर किसी पर शक करेंगे तो हमारा मन एक अंतहीन युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। दूसरों पर भरोसा करने से भी पहले एक और सबसे जरूरी पायदान है, खुद पर भरोसा, यानी आपका आत्मविश्वास। अगर आपको खुद की काबिलियत पर, अपने इरादों पर और अपनी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी रिश्ते को नहीं संभाल सकते। जब पूरी दुनिया आप पर उंगली उठाए तब भी अगर आपके भीतर से आवाज आए कि मैं सही हूं और मैं यह कर सकता हूं, तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कमा ली है। भरोसा एक कांच के बर्तन जैसा होता है, एक बार इसमें दरार आ जाए तो यह फिर कभी पहले जैसा नहीं चमकता। आज के अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर कमाइए जो बंद आंखों से आप पर विश्वास कर सकें, किसी का भरोसा जीतने में भले ही वक्त लें, किसी का भरोसा तोड़ने का गुनाह कभी न करें। और अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया भी है तो दुनिया से विश्वास करना मत छोड़िए, क्योंकि एक इंसान के गलत होने से पूरी इंसानियत गलत नहीं हो जाती। तो आइए आज से अपने रिश्तों में थोड़ी और पारदर्शिता, थोड़ा और सच और ढेर सारा भरोसा घोलें।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।
2: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दीन। एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद के बैठका में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगीस मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगीस फैसला। और प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन में काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन ये दौरान ओमन 2 पद्म विभूषण 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म अलंकरण दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी ताती घलो शामिल है जौन मल्ला पद्मश्री ले सम्मानित करेगी। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में केंद्र सरकार है बछर 2026 बर 5 पद्म विभूषण समेत 131 पद्म अलंकरण के घोषणा करे रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में आज मंत्रालय में राखे गए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में कतकुन फैसला ले गई। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साव बताइने कि मंत्री परिषद है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवार के सदस्य मल्ला हर एक वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दे जाही। एकर तहत जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण आजीविका मूलक परिसंपत्ति के विकास और ग्रामीण क्षेत्र मन में रोजगार के मौका दे जाही। ये योजना के तहत चालू वित्तीय बछर बजट में 4,000 करोड़ रुपये के प्रावधान करे गए है। उन्हें मंत्री परिषद है अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के घलो फैसला ले है। ये योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा बुनाई सिलाई हस्तशिल्प केंद्र के संगे संग दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाई राइस मिल डेयरी के संग सेवा केंद्र के स्थापना करे जाही। एकर तहत कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि सामान मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र घलो ग्रामीण क्षेत्र मन में स्थापित करे जाही। ये योजना के उद्देश्य स्थानीय उत्पादन प्रसंस्करण सेवा और विपणन गतिविधि ला बढ़ावा देना है। एखर ले गांव वाले मन ला अपन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नवा मौका मिलही। उन्हें एक आने फैसला में मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये नीति के माध्यम ले राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट और आने जैविक संसाधन के वैज्ञानिक प्रबंधन करके ओमला कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में बदले जाहि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ करी। ये मौका में श्री शाह किसान मन के सीधा भागीदारी मनला मजबूत करे बर खरीदी काम में बिचौलिया मन की भूमिका ला समाप्त करे के आह्वान करी। नेफेड के प्रगति के जिक्र कर श्री शाह कहने कि 12 बछर पहली गंभीर वित्तीय कठिनाई के सामना करत ये संगठन है आज 74 लाख किसान मन के सेवा करैया एक मजबूत संस्थान बन के उभरे है। ये मौका में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान घलो मौजूद रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम में पड़ैया प्रभाव और कृषि ऊपर एक असर के समीक्षा पर एक ठीन बैठक करी। बैठक के बाद श्री चौहान है मीडिया ले गोट बात करत बताइने कि अलनीनो के सेती देश भर में कमजोर मानसून की स्थिति बने हैं जिखर सेती करीबन 315 जिला ऐसा है जिहां वर्षा कमती होए के संभावना है। श्री चौहान है कहने कि अलनीनो के संभावित स्थिति ला देखत सरकार है किसान मन के हित की रक्षा और खेती में पड़ैया प्रतिकूल प्रभाव ला कमती करे बर प्रतिबद्ध हवे। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। उमन कही नहीं कि सूखा के स्थिति ले निपटे बर राज्य सरकार है कमती बेरा वाले फसल दलहन तिलहन ऊपर जोर दे के संगे संग बीज सुरक्षा और फसल बीमा ला प्राथमिकता देवत व्यापक रणनीति बनाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मनमा काली 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत अन्य विषय में गोट बात करे जाए।

0: आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण ले मिले सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची ला पढ़े जाही, संगे संग पात्र हितग्राही मन के प्राथमिकता सूची तैयार करे जाही और ग्रामीण मन ले मिले दावा आपत्ति के निराकरण करे जाही। ग्राम सभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में घलो गांव वाले मन ला जानकारी दे जाही। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज पुण्यतिथि हरय। ए मौका में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा ओमन ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में कहीने कि डॉक्टर मुखर्जी हा अपन जिंदगी ला देश के विकास पर समर्पित कर दीन। इति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका हा आज लोकभवन में डॉक्टर मुखर्जी के फोटो में फूल माला चढ़ा के श्रद्धांजलि दीन। ये मौका में राज्यपाल हा डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दे गए योगदान ला सुरता करत कहीने कि ओमन राष्ट्रीय एकता व अखंडता ला मजबूत करे बर अपन जिंदगी ला समर्पित कर दीन। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो में फूलमाला चढ़ाइन। ओमन कहने कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन के अमूल्य धरोहर आए। महासमुंद जिला के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरा मिले ले छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नवा संभावना बने हैं। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड डहर ले 200 टन खनिज सामान के परीक्षण के बाद 5 हीरा मिले हैं, जेखर वजन 1.22 कैरेट के हवय। एमा 2 जेम क्वालिटी के हीरा शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला प्रदेश भर महत्वपूर्ण बतावत कहीने कि एखर ले निवेश रोजगार और आर्थिक विकास के नवा मौका बाढ़ी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन भर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया 20 जून ले शुरू हो गए है। आदिवासी विकास विभाग के मुताबिक छात्रवृत्ति पर ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम ले जाही। उन्हें नवा आवेदन 1 अगस्त ले मंजूर करे जाही। विभाग स्पष्ट करे है कि छात्रवृत्ति के राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS के माध्यम ले सीधा विद्यार्थी मन के आधार ले लिंक बैंक खाता में जमा करे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून हा काली दस्तक दे के बाद आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताई ने कि 22 जून के मानसून हा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला के रद्दा ले प्रदेश में आगे है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। अवैया 2-3 दिन में मानसून के आगू बाढ़े की संभावना है। अब थोड़की समाचार सार मा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल डहर ले संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के प्रतिभावान लयिका मन ले 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए है। मत्स्य विभाग डहर ले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत 25 जून के रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। अंबिकापुर ले हजरत निजामुद्दीन के बीच चलैया एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ता में 2 दिन चलही। कर्मचारी चयन मंडल रहा ले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद में भर्ती पर 28 जून के पहली चरण के परीक्षा आयोजित करे जाही। और मुंगेली जिला में लालपुर थाना क्षेत्र के बैगा कांपा गांव के तीर हुए सड़क हादसा में 1 लड़का की मौत हो गई, उन्हें 2 जिन लड़का मन घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गाँव फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दीन। हेमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 वाले ज्यादा ग्राम पंचायत मन में काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावा थे। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों से सजा कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं जलसा गीत सादरी लोक गायक घसिया लकड़ा एवं साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम गोधुली में अब आइए सुनते हैं साजन कर्मा गीत सरगुजिया लोक गायक रामलाल राजवाड़े एवं साथियों की आवाज़ में।

सरगुजिया लोक गायक रामलाल राजवाड़े एवं साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे साजन कर्मा गीत। इसी के साथ कार्यक्रम गोधुली समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं लुका छिपी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है अखिल एवं ध्वनि भानुशाली की। संगीत निर्देशन है अभिजीत बघानी का और गीतकार हैं कुणाल वर्मा।

कार्यक्रम माधुरी की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं रांझना फिल्म का ये गीत। आवाज़ है जावेद अली, कीर्ति संगाथिया एवं पूजा की। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

कार्यक्रम माधुरी की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए हाईवे फिल्म का ये गीत। आवाज एवं संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार है इरशाद कामिल।

AR रहमान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हाईवे फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम माधुरी बस यहीं तक। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से

0: उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत जीरामजी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
8: डॉक्टर बुधरी ताती, समाज सेवा।
7: दंतेवाड़ा जिले के हीरानार ग्राम की निवासी बुधरी ताती को महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। उन्होंने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 उच्च प्राथमिकता वाले जिले शामिल हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत सीमित है। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों और SMS,

0: व्हाट्सएप, कॉल सेंटर, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया जैसे अन्य परामर्श माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60-40 का रहेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
0: वहीं मंत्रिपरिषद ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, बुनाई सिलाई, हस्तशिल्प केंद्र के साथ ही दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाइयां, राइस मिल, डेयरी तथा सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र, विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरी ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया विकासखंड स्तर पर 30 जून को, जिला स्तर पर 2 जुलाई को, राज्य स्तर पर 3 जुलाई को, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तथा आरक्षित

0: वर्ग के लिए 4 जुलाई को और आरक्षित दिवस 6 जुलाई को होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, वहीं नए आवेदन 1 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून कल दस्तक देने के बाद आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है।
1: 22 जून को मानसून ऑनसेट किया है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा तक। आज की स्थिति में देखा है तो मानसून जो है मध्य छत्तीसगढ़ तक प्रवेश किया है और आगामी 2-3 दिन में और भी आगे बढ़ने की संभावना है और वज्रपात वाला स्थिति जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों में 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 22 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सक्ती जिले के छुईपाली गांव के पास एक मालवाहक वाहन के पलट जाने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2रे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी बुधवार के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा 1:40 एवं रात्रि 10:00। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होगा शाम 7:05 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर। खेती की बात एवं खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 एवं दोपहर 1:05 पर। एक ही शब्द पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण समय होगा 11:05 पर।

कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15 पर। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीत कार्यक्रम वीर वंदन आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर।

तो ये थे कल यानी बुधवार को हमारे आकाशवाणी अंबिकापुर केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है रात्रि 8 बजे हमारे सोशल मीडिया पर आधारित हमारे श्रोताओं के फरमाइशों पर फिल्म आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात्रि 10 बजे वक्त होगा हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और रात्रि 10:30 पर वक्त होगा हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम मन भावन का। और शाम 7:20 पर वक्त होगा हमारे किसान श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेहंदी हसन की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ।

कार्यक्रम रजनीगंधा की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल। शब्द रचना है मुमताज रशीद के।

पंकज उदास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम किस्नु भैया,
1: राम राम तिजे बहन,
0: और हमर जमो सुनो या किसान भैया बहनी मन लभी
1: राम राम, राम, राम। तिजे बहन, देखिए हमर किसान भैया बहनी मन आहे नहीं ता दे बरखा ला तो अगोरत है,
0: अगोरत है,
1: आउ भाए कही तो एक दुई दिन तो आतर केर के पानी हर बरसत है।
0: हाँ।
1: बाकी अभी अभी ले फिकरा ही नहीं हमर किसान भाई
0: है, और देखिए जेकस अनुमान आते हैं।
1: हाँ।
0: जेकस फोरकास्टिंग है।
1: हुँ।
0: वो अलनेनो कर कारण कहते हैं कि भाई बरखा कम हो ही मानसून।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं एक बात ला जरूर मैं आगू जोड़ता हूँ कैसे कि हमन हन सीमांत किसान

0: किसान छोटा किसान
1: हाँ।
0: और हमन आशा पूरा रखती विश्वास रखती कि भाई बरखा होही मानसून आधारित कृषि करती
1: हाँ।
0: तो यही आशा और विश्वास कर सान कि बढ़िया मानसून होई बछर भर जो हमर पानी हमन जो मानसून कर समय में संजो थी वो मानसून ऐसे रीता नहीं जाही
1: हाँ। बाकी तीजी भी चटिक अबेरा तो होएगी सह
0: अबेरा होई सह
1: हाँ।
0: और ये बात ला भी स्वीकार करना पड़ी किसनु भाई कि लगातार सचेत करत रहीन कि पर्यावरण में बहुत तेजी से बदलाव आता है लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान भी बढ़ता है और अभी ये आगिस हमन देखे में भी सुने में भी आगिस कि भाई अब मानसून भी कहते हैं कि चटी कम बेरा बेरा तो मौसम भी होत रही
1: हाँ।
0: लेकिन अब वो भी मानसून ला भी कह दिन है तो लेकिन आशा यही और यही आगे बार अपेक्षा भी रखो कि अब हमन ला जितना संभव हो सकी ये प्रकृति ला संजोए बर ये प्रकृति ला हमन ला सहेजे
1: बर बचाए बर
0: हर संभव हमन प्रयास अपन तरफ ले करब।
1: एकदम सही बात लग रहे तीजे बहन बाकी नहीं आज तो मैं कहता हूँ कि कहीं विशेष दिवस है कि
0: हाँ आज देखिए हमन देखब ना तो आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है। अब देखिए ये शब्द ला अगर हमन हमर भारत में खास कर सुनथन तो चटिक शब्द ला जल्दी से स्वीकार नहीं होते सामाजिक रूप से लेकिन देखिए जो हमर बहनी मना है उमन मन मन बर अधिकार उमन कर सम्मान और उमन कर संघर्ष कर प्रति सबला जागरूक होना जरूरी है। कहे कि जब एक महिला हर एकाकी हो जाते अपन जीवन साथी ला खो देते तो एला देखन कि भाई ओला हर तरह कर कभी तो आर्थिक रूप से कोई परेशानी आ जाए कभी सामाजिक होगीस कभी संपत्ति विवाद होगीस और बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जेला हमन ला वैश्विक मंच में उठाना जरूरी है लाना जरूरी है ताकि वो बहनी मन ला एकदम बराबर कर अधिकार मिले।
1: एकदम सही बात लग गए नूरे और का होते नहीं राउर कहन नहीं कि जो अपन जीवन साथी ला खोए देते तो वह चटिक मन ले कमजोर हो जाते और मन ले भी कमजोर हो जाते और कह तो चटिक ओकर आर्थिक स्थिति भी चटिक गड़बड़ाई जाए।
0: हाँ यदि भाई एक ठी साथी हर खाली मतलब हाँ, अगर हाँ, पैसा कमाते हैं हाँ,
1: तो हम तो देखी सबले पहला जिम्मेदारी आ है नहीं तीजे बहन कि ओकर ले पहल तो सम्मान पूर्वक व्यवहार करी और समान व्यवहार करी ऐसे नहीं कही कि भाई वह अकेला है
0: हाँ।
1: भाई वह तो आगुले परेशान है एक और व्यवहार रखब तो वह और अकेलापन
0: हाँ। महसूस कर परेशानी हो
1: जाए हाँ। आर्थिक क्षति कर बात करें तो कम से कम ओला ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए कि उकर आर्थिक स्थिति हर ठीक रहे है नहीं और जो भेदभाव कर बात करत रहे दूरे वो चीज ला भी ध्यान रखना है कि भाई समान व्यवहार रखना है हाँ, से
0: हाँ,
1: है नहीं अब अगर कर माली नान छुआ मना है छोटे लिका मना है तो उमर ला भी सहयोग करना चाहिए
0: हाँ,
1: परिवार कर देखिए दो जना है तो अलग बात है बाकी संयुक्त परिवार अगर है तो बाकी जो सदस्य हैं संयुक्त परिवार कर उमन कर जिम्मेदारी बनते कि ओला संबल दें साहस दें और आगू काम बूता करे कर हौसला बढ़ाए
0: हाँ। अब देखिए जो एक तरह कर जो एकर उद्देश्य है कि भाई अधिकार कर रक्षा जैसे रोड कहन सामाजिक रूप से कई तरह कर जो पहले हमारे भारत में कलंक भी एक तरह कर रही है एकर अलावा आर्थिक आत्मनिर्भरता का बात रोड कहे है अब सरकारी योजना में बहुत सारा चलता है
1: ऐसे नहीं
0: सहयोग करता है सरकार कि बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है और एक ठीक है राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एकर बाद विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन
1: अच्छा
0: एकर बाद जो अगर हमन देखब कि कौशल विकास योजना कर अंतर्गत तरह तरह कर कार्यक्रम में कौशल उन्नयन कार्यक्रम में बहनी मल्ला शामिल करल जाते हैं और हर तरह का मल्ला सहयोग प्रदान करल जाते हैं जीवन कर उमन अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ कर सके तो ये भी है। अब रौरे देखे होइया कि कोई हमार गांव गवई कर बहनी मन अगर ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं रहते लेकिन एक तरह कर हस्तकला उमन कर रहते हाथ में कला जरूर रहते
1: जरूर रहते।
0: अब कौशल कर माध्यम से चाहे डिजिटल साक्षरता कर माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देहल जाते तो ये सब करके जो बहनी मल्ला है एक तरह तरह से सुरक्षित जीवन करे बर ये बहुत बड़ा प्रयास है।
1: और देखिए कहीं दिवस हमरे मनाती नहीं तीजे बहन
0: हाँ।
1: तो ये दिवस ला भी एकरे ले मनाती कि उमन कर जो समस्या है उमन कर जो बात है ओला सुमिरी हमरे और उमन कर दुख तकलीफ ला हमरे महसूस करी और हम

0: और श्रोता मन भी महसूस कर रहे हैं, और हमारे आसपास गांव में, परिवार में, समाज में अगर कोई ऐसा है तो आगे बढ़ के सहयोग
1: करना चाहिए। और देखिए कानूनी अधिकार भी सरकार बगरा बनाई सा है, तो ओ मन ला भी अपन कानूनी अधिकार ला जानना समझना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि जिंदगी हर कहीं कमजोर होगी सरिताएगी। जीवन बहुत खूबसूरत है, इला एक ऐसा दृष्टि से देखना है कि देखिए साथी है पहले, ऐसा नहीं है कि कोई साथ अगर मित्र है साथी है हम सफर है तो साथे में जाए, ये प्रकृति का नियम है भाई, सबला अपन अपन हिसाब से आना जाना है संसार में, तो ये में कहीं का जोर नहीं है, तो ये बात ला एकदम स्वीकार भाव से देखी और संभल होके जीवन ला आगे बढ़ाए।
0: एकदम सही बात लग कहें तीजी बहन। बाकी मैं कहा तो नहीं कि आघु कर देखी सड़क मल्ला है और आज कर सड़क मल्ला चटिक तो बदली से है।
1: चटिक नहीं, मैं तो कहूँ ना मैं भरपूरे कर आनंद लेता हूँ विष्णु भाई,
0: ऐसे नहीं
1: कहूँ जइ ना तो अब ओकस जो घड़ी गढ़ा में हम हचक मचक करके जात रहे ना, अब इतना बढ़िया सड़क होगी सर, और कहूँ कहूँ तो 2 लेन 4 लेन वाला सड़क होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक अलग बात है।
0: अच्छे
1: कैसे कहता कि जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है राष्ट्रव्यापी योजना है, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र कर सड़क कर जो संपर्क से वंचित है जो ग्राम वो मल्ला सोच मैंने सड़क बनाना है, और सबसे बड़े बात सबसे बड़का बात हर मौसम में चले वाला सड़क बनाना है।
0: कैसे
1: किसनु भाई याद करिया कि पहले आगू हमन कहूँ जात रहे छोटा छोटा गांव गई में हमार रिश्तेदार परिवार सब रहते, तो हमन घर जाए जवाई में भाई कोई तीज तिहार में जाए घनी भाई चिखला बोरो में बोझाए जात रहे, लेकिन अब बढ़िया सुरक्षित संरक्षित हो गई, बढ़िया जाती आनंद के साथ जाती
0: जाती जाती कहब नहीं तो नवा लुगा कपड़ा हर
1: याद रहती जा
0: तो अब आजकल देखी भाई कहे नहीं कि यदि सड़क घर पहुंची तो हमारे विकास पहुंची
1: विकास हुई
0: है नहीं, तो यही है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
1: देखिए मैदानी क्षेत्र में जो रहे वाला जो हमार आबादी है उसमें जो जुड़ल बस्ती वाला 12 मासी सड़क से जोड़ना विशेष, और पहाड़ी क्षेत्र ला जैसे पूर्वोत्तर राज्य ला भी और जनजातियों पिछड़े जिला ला भी 250 से अधिक आबादी वाला बस्ती ला भी हमें शामिल करल गई से
0: ऐसे नहीं,
1: और एक अलावा वामपंथी उग्रवादी जो क्षेत्र है जो प्रभावित रही इस पहले ओमन ला भी कहे कि विकास सुरक्षा ये करनी वह है, तो ये ला दूरस्थ इलाका ला भी माने सड़क से जोड़े कर बात है ताकि जो नेटवर्क है उसे मजबूत करल जा सके, तो एकर जो योजना है इला इतना जैसे प्रमुख रूप से तकनीकी विशेषता गुणवत्ता ला ध्यान देहल जाते, जैसे हरित तकनीक सड़क का निर्माण हुई तो पर्यावरण का अनुकूल टिकाऊ सामग्री प्लास्टिक कचरा और फ्लाई एस कोल्ड मिक्स और जूट कापर का उपयोग करल जाते हैं, 3 स्तरीय गुणवत्ता का निगरानी भी इसमें होता है, साथ ही साथ जो इसमें ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली कर माध्यम से परियोजना कर वास्तविक समय और डिजिटल ट्रैकिंग भी करल जाते हैं।
0: ऐसे नहीं, और मैं तो कहता हूँ नहीं कि ये जो बढ़िया सड़क हर बनिस नहीं तेकर से देखिए हमारे जो गांव गवई कर रहे हो या भैया बहनी मना है नहीं तेमर ला कहब तो बाजार स्कूल अस्पताल बैंक और जो सरकारी ऑफिस है कार्यालय है तिहाँ तक पहुँचे में देखिए सुविधा होगी
1: सर,
0: बढ़िया सड़क ले नहीं
1: आगु देखिए महतारी वंदन कर एम्बुलेंस भी चटिक मने देर हो जाता
0: है
1: और जच्चा बच्चा मनला भी थोड़ा सुरक्षा इतना नहीं घटा पाती, लेकिन जैसे सड़क हर बनी सा है ना तो सुरक्षित प्रसव होता है जच्चा बच्चा सुरक्षित है और कोई कस गांव गवई में भी कोई कस अगर भाई बीमारी हारी होता है
0: तो माने कह ली कि मरीज मतलब समय पर अस्पताल पहुंचाए देते ही और स्वास्थ्य सेवा हर गांव गवई तक पहुंचाता है। बाकी यदि देखिए तो बेरा हर का कहता है
1: कि देखिए आज चलना है मतलब किसान वाणी में और सजीव किसान वाणी कर दिन है तो का थी
0: चली
1: चल जाए

0: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कर प्रस्तुति किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया किसान भैया बहनी मनकर
1: स्वागत
0: करे थे। किसनु भैया आप रवि बताई का हाल चाल है। आज हमारे विशेषज्ञ आई है डॉक्टर लीलाधर साहू विशेषज्ञ है विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर से अंबिकापुर में पदस्थ है।
1: तो भाई सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते ही डॉक्टर साहब रावकर बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और आज कर जो विषय है नहीं हमार तेकर बारे में हम अपन श्रोता मल्ला बताए देती ही उन्नत फसल उत्पादन हेतु नर्सरी प्रबंधन और गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने की आधुनिक तकनीक ये हमार विषय है जेकर बारे में हमार श्रोता मन पूछी राउर से सवाल और राउर ले बढ़िया लेहन हमला जानकारी भेट है।
0: लेकिन जब तक फोन नहीं आता
1: हाँ।
0: तो हमन शुरू कर देते ही।
1: बिल्कुल सही बात कहें रौरे। तो लेकिन तो डॉक्टर साहब सबले पहले सवाल तो देखिए मोर मन में ये आता है नहीं कि दे आमतौर पर तो जानते हैं हमारे किसान भैया बहनी मन और कि दे नर्सरी हर का होते लेकिन राउर विशेषज्ञ ही
2: जी
1: राउर बताइए कि दे नर्सरी हर का है और हर कितना प्रकार का है।
2: हाँ तो ये जो नर्सरी होते ये वो स्थान होते जहाँ बीज के बुआई करे जाते और कटिंग करे जाते कटिंग के द्वारा ग्राफ्टिंग के द्वारा बडिंग के द्वारा ये सब के द्वारा पौधा को उत्पादन करे जाते और ओकर देखभाल करे जाते। तो ये जो है वह नर्सरी कहलाते।
1: अच्छा
2: नर्सरी है जनरली तीन प्रकार के होते जिन्हा अस्थाई नर्सरी अस्थाई नर्सरी अधिकतर छोटे किसान मन बनाते।
1: अच्छा
2: ये खेत में ही बनाते मन है और कुछ समय के लिए वो करके रखते मन है बना के और जैसे एकर मन के काम खत्म होते फिर ओला फिर से उपयोग कर लेते बुआई वगैरह के लिए। दूसरा होते एक स्थाई नर्सरी। स्थाई नर्सरी जनरली थोड़ा बड़े किसान होते ये मन बनाते और एकर जो है परमानेंट एक वो रहते नर्सरी जहाँ ये मन है पौधा को जो मटेरियल है वो तैयार करते कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग ये सारा चीज जो है करके पौधा तैयार करते तो ये मन परमानेंट वो रखते नर्सरी। तीसरा एक होते व्यावसायिक नर्सरी जो कमर्शियल पर्पस पे रखते और बाहर जो है ये मन हर बेचते।
1: अच्छा
2: अपनो एहल एहर उपयोग करते और बाहर भी जो मार्केट में डिमांड रहते तेकरो मन के एहला उपलब्ध कराते।
1: अच्छा
2: तो ये एक होते व्यावसायिक पर्पस वाला नर्सरी जी। तो ये तीन प्रकार के नर्सरी पाए जाते।
1: इधर बातचीत में रहो रे कटिंग बडिंग कर बात कहें
2: जी
1: तो तेहर का जाते होते
2: कटिंग जो है सर पौधा के ये लग कटिंग करे जाते और एकर बाद जनरली ये जो होते गुलाब के पौधे में होते कटिंग करके इला दूसरे जगह लगा दिए जाते और लगाए के बाद एकर से नया पौधा उत्पन्न होते।
1: अच्छा
2: एमा का है कटिंग में एक चीज ध्यान रखे लगते कि तिरछा जितना लंबा हो सके वो काटते ताकि पौधा ला पोषक तत्व और पानी खाद वगैरह ज्यादा उपलब्ध हो सके।
1: हाँ।
2: ये सीधा ऐसे ना काट के ला तिरछा काटे जाते।
1: हाँ, देखिए मोर मन में सवाल हर नहीं एकरे ले आईस कि कहीं तो ओकर तकनीक अलग हुई भाई कहीं कहीं ये सीधा काट दे।
2: हाँ नहीं
1: तो तेकर तो ओकर फायदा हर नहीं भेटे ही।
2: वो में बहुत कम फायदा होते एकर से आप देखो अधिकतर जब कटिंग करते ग्राफ्टिंग वगैरह करते तो ये ला जो है तिरछा काटे जाते तिरछा काटते ताकि ज्यादा से ज्यादा ओला स्पेस मिले जगह मिले पोषक तत्व वगैरह खींचे बर और ओला फिर कटिंग करके अलग से लगा।
1: तो गुलाब कर पौधा में
2: ये गुलाब के पौधा में कटिंग होते वैसी जो होते एयर लेयरिंग कर लेयरिंग करके बोलते दाब विधि करके इमा का करते

0: पौधा जो तना होते ओला मिट्टी में दबा दिए जाते।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी में दबाए के बाद एमा का है जड़ आ जाते, जड़ आते तो एकर बाद एला का करते काट के अलग कर दिया जाते पौधा को वो से ये तना ला, और अलग करे के बाद एला फिर दूसरा पौधा उगाया जाते।
1: अच्छा।
0: तो ये जो होते तेन हर अमरूद में होते।
1: अच्छा।
0: अमरूद के फसल में वैसी आप मन हर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जो है यूहू में नीचे जो है अलग पौधा रहते।
1: अच्छा।
0: मदर प्लांट करके बोलते देसी वाला यूज करते, और ऊपर में जो है दूसरा पौधा लेते जेला उगाना है।
1: अच्छा।
0: दशहरी लेना है और कुछ लेना है तो इस टाइप के, तो ये अधिकतर आम में होते।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक नीचे दूसरा देसी पौधा, ऊपर में दूसरा पौधा, इला ये करके बांध करके ग्राफ्टिंग कर दे जाते।
1: तो एक कर तो एक उपज प्रभावित नहीं होयल
0: ग्राफ्टिंग में। जो ऊपर जो है वो अच्छा उन्नत किस्म वाला जो पौधा है।
1: अच्छा।
0: ओकर वो लगाए जाते, और नीचे में जो हाँ नीचे में जो है देसी कला लगाए जाते तो उत्पादन और ज्यादा अच्छा होते, प्रभावित होते। देसी वाला नीचे जो यूज करे है वो हर लोकल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते वह, और जो ऊपर वाला जो है वो हर उन्नत किस्म के थे तो वो उत्पादन बहुत अच्छा देते।
1: कुल मिला के ये बात कर सावधानी रखना चाहिए।
0: जी जी है जी।
2: तो देखिए नर्सरी कर गोड चले थे ना, तो मैं कहता हूँ कि मोर मन में सवाल आई कि भाई नर्सरी तो जैसे जरूर बताएं कि प्रकार लभी बताएं, लेकिन स्थान का चयन कैसे करना चाहिए?
0: नर्सरी के स्थान चयन करते समय किसान भाई मतलब कुछ बात के ध्यान रखना चाहिए, जेमा विशेष रूप से पहला जो आते जल निकासी, जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। काबर की नर्सरी अवस्था में पानी जो है बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, निकासी के संपूर्ण व्यवस्था रहे, ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए। दूसरा बात ध्यान रखना चाहिए किसान भाई मल्ला कि सिंचाई के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, आसपास में देख लें कि सिंचाई का साधन है कि नहीं है, ताकि नर्सरी जो उत्पादन है फसल के वो अच्छा हो सके। तीसरा किसान भाई मतलब कोशिश करना चाहिए धूप।
2: अच्छा।
0: धूप जो है पर्याप्त मिलना चाहिए ताकि नर्सरी जो फसल के उत्पादन है वो अच्छा हो सके।
2: अच्छा
0: जी। चौथा एमा सड़क या बाजार के दृष्टि से थोड़ा से नर्सरी ला जो है अधिकतर जो है सड़क जहाँ पास है लगे है डायरेक्ट ऐसे जगह चुनाव करना चाहिए।
2: अच्छा।
0: परिवहन
2: करवा
0: परिवहन दूसरा जो खरीदने वाला है
2: हाँ
0: वो मन हाँ रोड में ही जावत जावत देखते रहते, तो कोशिश करना चाहिए किसान भाई मल्ला कि रोड में ही मतलब हो नर्सरी के, ऐसे हाँ टाइप के चयन हाँ करना हाँ चाहिए।
2: हाँ।
0: चौथा नर्सरी जो है रोग मुक्त और कीट कीड़ा वगैरह से मुक्त रहे ऐसा जगह के चुनाव करना चाहिए।
2: अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ये तो होगी स्थान चयन कर बात, तो इसमें जैसे अधिक उत्पादन बढ़िया आधुनिक विधि से जो आधुनिक तकनीक है गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करे बर, तो कौन कौन सा संरचना कौन कौन सा घटक होना चाहिए इसमें?
0: जी नर्सरी में गुणवत्ता युक्त उत्पादन बर घटक जो है पहला तो मदर प्लांट होते। मदर प्लांट जो है अभी आप मतलब बोले हों कि ग्राफ्टिंग में नीचे देसी उपयोग करे जाते ऊपर अलग, तो ये सब जो है मदर प्लांट वगैरह है, तो ये एक घटक है। दूसरा सीड बेड, सीड बेड जो है दूसरा घटक है।
2: अच्छा।
0: पौधा मन के जो नर्सरी को उत्पादन करे जाते ओकर बर अलग अलग बेड तैयार करे जाते, तो ये एक होना चाहिए सीड बेड। तीसरा पाली हाउस या सेड नेट होना चाहिए, ये तीसरा घटक है। चौथा सिंचाई की व्यवस्था, समुचित सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। पांचवा जो है पॉटिंग क्षेत्र करके, तो एमा जो है पॉटिंग

0: क्षेत्र में मिट्टी रेत गोबर कंपोस्ट वगैरह मिलाए बर
1: अच्छा।
0: एक वो होना चाहिए
1: अच्छा।
0: तो ये सब एकर घटक है जी।
2: अच्छा जो नर्सरी हमर स्थान का चयन करते वगैरह में कहीं माटी कर भी ध्यान रखना चाहिए का खेत वो जो खेत कर जो माटिया है वो कुछ विशेष प्रकार कर रहना चाहिए ऐसा कहीं आ है क्या?
0: हाँ एमा का है आप मतलब पहले ही जल निकासी सिंचाई की सुविधा वगैरह बताए हबो पर्याप्त धूप रहना चाहिए सड़क बाजार से लगे होना चाहिए कीड़ा बीमारी से मुक्त होना चाहिए और खरपतवार वगैरह नहीं लगे रहना चाहिए और यदि एमा कंकड़ पत्थर वगैरह है ये सारा चीज निकाल लेना चाहिए। एकर अलावा एला अच्छा जुताई करके दो तीन जुताई करके अच्छा मिट्टी भुरभुरी कर लेना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी करे के बाद मिट्टी भुरभुरी करे के बाद जो है एमा
2: मैं तो कहता हूँ कि माटी कर जो उपचार है वो भर भी अगर करवाए ले हमारे किसान भाई मन तो ज़्यादा अच्छा रही।
0: हाँ हाँ हाँ और एकल्य अधिकतर का है जो अभी बोलते रहे ना तो मिट्टी रेत और गोबर या कंपोस्ट खाद ये जो तीनों हैं एकर अनुपात ला ध्यान रखना चाहिए एक अनुपात एक के रेशियो रखना चाहिए तीनों के बराबर एक रेशियो रहे तो बेस्ट एक वो जो है पॉटिंग वोकर मिक्स वाला बन ही ज्यादा अच्छा है रही नर्सरी के लिए।
2: और मान लीजिए अगर बीज का चुनाव भी करते हैं तो उस समय बात कर ध्यान रखें कि गुणवत्ता वाला बीज है ना।
0: हाँ हाँ हाँ
2: प्रमाणित रही तो और अच्छा है
0: जी।
2: इला बीजोपचार भी जरूरी है का?
0: हाँ कोशिश करें का है बीजोपचार बहुत जरूरी है बहुत सारा बीमारी जो है वो हर जैसे बच्चा मन ला टीका लगाथन वैसी जो है बीजा मन ला घलोक टीका लगाए की जरूरत है तो ओकर बर जो है बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। एकर तीन चार प्रकार हवे जेकर द्वारा बीजोपचार कर सकते किसान भाई है तो सिंपल अपन घर में कर सके एकर बर एक 17% नमक घोल उपचार के थे।
2: अच्छा
0: हाँ ये जो है 17% नमक घोल जो उपचार है एमा का करते एक टब में पानी लेना है पानी लेना है और एमा जो है अंडा या फिर जो मन कुछ वेजिटेरियन रहते तो ओमन आलू डाल दे।
2: अच्छा
0: और ओकर बाद ओमा नमक ला डालत जावे हाँ नमक ला घोलत जावे तब तक घोले जब तक अंडा या फिर आलू जो है ऊपर नहीं आ जाए।
2: अच्छा
0: यदि ये ऊपर आ गए मतलब समझ जाओ कि यह 17% नमक घोल के बन गए।
2: अच्छा
0: अब एमा का करना चाहिए किसान भाई ला जैसे धान के बीज बोत हबे तो एमा डालना चाहिए नमक घोल में और जो खखरा बदरा जो पोची टाइप के बीजा है वह बीमार टाइप के बीजा हबे जे मन अंदर से स्वस्थ नहीं है ये सारा जो बीजा हबे ते मन हर ऊपर में आ जाए
2: अपने आप।
0: हाँ अपने आप 17% घोल है तेकर सेती और जो अच्छा बीजा स्वस्थ बीजा हबे ते मन हर नीचे जाग बैठ जाए।
2: अच्छा
0: हाँ
2: तो यह तो बढ़िया उपाय रहे बताएं
0: बहुत बढ़िया और सस्ता उपाय और ये जो बीजा है तेनहा ऊपर आगे इला निकाल के
2: फेंक दे उला।
0: सब वो वाला है बीमार वाला खराब वाला और जो नीचे हवा अच्छा बीजा ओला निकाल लेना चाहिए।
1: ठीक है फोन आई से बोले तो हाँ हेलो
3: हाँ नमस्ते
1: हाँ नमस्ते समर कार्यक्रम में स्वागत है अपन नाम लो बताई।
3: मैं जयमंत्री केवट बोल रही हूँ अनूपपुर मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जयमंत्री दीदी देखिए एक्सपर्ट हमारे साथ में है तो अपन हाँ, सवाल ला रखी
3: जी वो जैसे अभी बता रहे थे नर्सरी प्रबंधन के बारे में तो इसमें नर्सरी जब तैयार करते हैं तो वो कौन सा उन्नत और कौन सी विधि से कर सकते हैं एक विधि बताइए हम।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब आप हमारे जो जयमंत्री बहन है उनका सवाल ला सुना अब ये बताइए कि और कौन सा उन्नत विधि है जी मैं
3: क्या नर्सरी प्रबंधन के लिए कोई मशीनों से तैयार की जाती है और कुछ जैसे

0: तो करते ही हैं।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: तो हाँ बताइए डॉक्टर साहब।
2: का बोलत रहे हो आप, है एक बार वो अपन प्रश्न दोहरावा तो।
0: डॉक्टर जी
2: हाँ नमस्ते।
0: जैसे नर्सरी प्रबंधन अभी हमारे यहाँ उसके लिए खीरा के लिए नर्सरी तैयार किए हैं और करेला की, तो जो एक ट्रैक्टर आती है उसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, उसमें अपने आप मतलब नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी को इकट्ठा किया है, फिर गोबर खाद को उसमें बिछाने के लिए तो मजदूर लगाए थे, है ना। तो क्या कोई और ऐसा तकनीक है जिसमें मतलब समय कम लगे और मतलब काम हो जाए?
2: वैसे तो बहुत सारा तकनीक है
0: जी।
2: हाँ अभी बहुत सारा लेटेस्ट सब तकनीक आ गया है नर्सरी के वो के लिए, मैनेजमेंट के लिए। अब आप जो बोल रहे हैं जैसे नर्सरी की उन्नत तकनीक के बारे में, तो अभी आप लोग आपको मैं बता रहा था कटिंग वगैरह, ग्राफ्टिंग और बडिंग है, टिश्यू कल्चर है, ये सब एयर लेयरिंग है, लेयरिंग है, ये सब नया तकनीक है। हाँ तो इसके थ्रू जो है बीज का जो है उत्पादन बहुत जल्दी होता है, और मदर प्लांट का जो
0: ये मदर प्लांट जो बता रहे हैं ना,
2: हाँ
0: इसको आप अपने स्थानीय बोली भाषा में बता देंगे थोड़ा सा, मतलब अपने चर्चा
2: हाँ, के नीचे में जो देसी जो बीज वो पौधा उपयोग करते ना,
0: हाँ
2: ओला मतलब कहा था मैं है मदर प्लांट करके।
0: अच्छा
2: हाँ तो एकर जो उपयोग करके फिर उन्नत ये करे जा सकते।
0: तो ये फलदार पौधों के लिए बता रहे हैं कि बागवानी सब्जी वगैरह के लिए बता रहे हैं?
2: हाँ ये अधिकतर फलदार पौधों में ज्यादा उपयोग करते हैं इसको। हाँ ग्राफ्टिंग टिश्यू जैसे टिश्यू कल्चर है, केला में किया जाता है ये,
0: केला में भी हो सकता है ये।
2: हाँ टिश्यू कल्चर केला में ये प्रयोगशाला में ही होते, और एकर से एकर टिश्यू निकाल के बहुत सारा मतलब पौधा बना दे जाते। और एमा जो है एकर खास बात ये है कि एमा एकर माता वो जो है पेरेंट के पित्र के ओकर जो वो है गुण जो है रिथेमा, और बहुत जल्दी जो है बहुत सारा पौधा जो है तैयार हो जाते बहुत सारा। तो ऐसे सब तकनीक हवा कटिंग बडिंग ये सब कर करके। हाँ
0: हाँ तो जैसे कुछ चीजें आप अंग्रेजी वर्ड का करते हैं तो हमारे स्थानीय भाई बहनों के थोड़ी थोड़ी
2: हाँ एक्चुअल में थोड़ा बहुत का है वो जो पढ़ाई है अंग्रेजी में हो रही थी, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत
0: है ना। जी तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, और अपने यहाँ ये अभी क्राफ्टिंग वाला नहीं हो रहा है अपने आसपास में।
3: देखिए
1: हमारे जयवंत्री बहन धन्यवाद कर देती फोन करे बार
0: जी। धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छी।
3: एक तो सवाल मोर रही कि ये जो तकनीक के बारे में राउर बतात रहे हैं, ये एकर में कहीं प्रशिक्षण भेटा थे का?
2: हाँ एकर समय समय में प्रशिक्षण होते रहते कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, समय समय में होते एग्रीकल्चर कॉलेज मन में होते, और एकर अलावा कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग यहू मन है समय समय में ट्रेनिंग देवत रहते।
3: तो किसान भाई मन जाए के उला प्रशिक्षण ले,
2: किसान भाई मन जा कोकर प्रशिक्षण लेवत रहते। अभी ट्रेनिंग के बात करे हो तो अभी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ में चलत हवे खेत बचाओ अभियान करके, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री है ओकर आह्वान में पूरा देश भर में चलत है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभी चलत हवे।
3: अच्छा
2: और एकर चलते लगभग एक महीना के करे है तेमा हमार छत्तीसगढ़ में लगभग जितना गांव कोशिश करत हवे ए मन में जाके वैज्ञानिक मन है कृषि विभाग वाला मन है खेत बचाए के नया नया तकनीक ला बतावत हवे।
3: देखिए हमार बातचीत चलत रही डॉक्टर साहब, कुछ एक संदेश है तेमन ला सुन लेती तेकर बाद में आने और बात करब।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हेलो,
7: आवाज आते मोर?
6: हेलो,
7: हाँ हेलो,
6: हाँ हेलो, किसान वाणी।
7: हाँ भैया, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपन नाम बताए।
6: दीदी, मैं ये ग्राम तारकेश्वरपुर ले मधुसूदन प्रजापति बोला था।
7: हाँ प्रजापति भैया।
6: हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जम्मो किसान भाई मतलब राम राम, जो डॉक्टर साहब आई है मतलब भी राम राम, आप मतलब राम राम
8: राम राम।
6: जैसे कि बड़ा अच्छा विषय रखे हैं कि उद्यानिकी फसल में नर्सरी के तैयार कैसे करी। नर्सरी तो कहमन जैसे अभी तो धान के सीजन चला थे मुख्य रूप से, लेकिन एकर अलावा हमन अभी कहा है कि थोड़ा बहुत खाए भेर पर जैसे भाटा मिर्चा टमाटर वगैरह की भी खेती करती, तो हमन कौन विधि ले नर्सरी तैयार करी, कौन किस्म के अच्छा से हमन कहाँ ले मतलब बीज प्राप्त करिए, कर बारे में जो साहब आई है सुघर ले जानकारी बताती।
7: अच्छा, तो
6: जैसे लगाए के बाद भी हमन ला कौन कौन सा दवा कर यूज करना पड़ी, कितना कितना दिन में, ओकर बारे में भी थोड़ा जानकारी बता देती।
7: हाँ डॉक्टर साहब जरूर जवाब देते और फोन करी पर बहुत बहुत धन्यवाद।
8: तो आपके सबसे पहला प्रश्न यही सब है कि कहाँ से बीज उपलब्ध हो ही, तो आप कोशिश करो कि आपके जहाँ से भी हो वहाँ उद्यानिकी विभाग होते। आप बात करें हब कि मिर्च टमाटर इस टाइप के, बैगन वगैरह, तो एकर जो आप बीज उपलब्ध हो जाए वो हर उद्यानिकी विभाग से आपके विकास खंड में, हर जगह हर विकास खंड में नर्सरी होते, तो वहाँ आप संपर्क करूँ तो आप बीज जो है उपलब्ध हो जाए। दूसरा रही सब है कि आप हर तैयारी के लिए बोले हो नर्सरी के, तो नर्सरी की तैयारी के बारे में हर बतावत रहे हबों कि नर्सरी के स्थान के चयन कैसे करना चाहिए करके, तो एमा आप हर कोशिश करूँ अच्छा जल निकास वाला जगह होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, पर्याप्त धूप होना चाहिए, दूसरा सड़क और बाजार से लगे होना चाहिए, रोग कीट मुक्त होना चाहिए, खरपतवार मुक्त होना चाहिए। ये सब मैं आप मतलब स्थान के चयन पर बता रहे हूँ। एकर बाद आप कोशिश करूँ जब यह मिलाहू खाद वगैरह ला, तो मिट्टी कोशिश करूँ मिट्टी एक भाग होना चाहिए, रेत एक भाग होना चाहिए, और गोबर या कंपोस्ट के खाद जो हो ये तीनों जो है एक एक अनुपात में हो तो ये बेस्ट है पॉटिंग मिक्स करे बर। तो ये ऐसे करूँ तो आपके जो नर्सरी है वो बढ़िया रही। दूसरा एकर बाद जो है आप ध्यान दो कि बीज उपचार के बारे में अभी आप मतलब में बतावत रहे हबों, तो 17% नमक घोल के बारे में तो आगे जात रहे हबों। एकर अलावा भी हबे बीजामृत बना के आप कर सकता हो, ट्राइकोडर्मा हबे, थायराम या कैप्टान, कार्बेंडाजीम, ये सब के द्वारा भी, राइजोबियम के द्वारा भी बीज के उपचार करके आप एकर बुआई करूँ तो बहुत सारा बीमारी और जो नर्सरी स्टेज में कीड़ा वगैरह आते एकर से आपके कंट्रोल हो ही।
7: भाई जो श्रोता रहे उनका जवाब मिली सो ही। अच्छा एक चीज संदेश आओ सुन लेते तो फिर आगे बोट करते।
9: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉक्टर साहब, देखिए, सब तरह कर प्रबंधन कर बात करें, नर्सरी कर कैसे गुणोत्तयुक्त पौध तैयार हुई, लेकिन एक ठीक बात है कि ये में कहाँ परेशानी आ सकता है नर्सरी प्रबंधन में?
4: हाँ, नर्सरी प्रबंधन में शुरुआत में जो आने वाला परेशानी है, अधिकतर जो है डंपिंग ऑफ करके एक बीमारी होते।
3: अच्छा।
4: हाँ, तो ये जो होते तेन हर अधिक नमी और फफूंद वगैरह कारण होते।
3: अच्छा।
4: तो एकर बर किसान भाई मन ध्यान रखना चाहिए, बीज ला उपचार करके बोना चाहिए। दूसरा कोशिश करना चाहिए कि जल के निकास अच्छा से होए।
3: अच्छा।
4: पानी हर रुके मत। एकर अलावा जो है पौधा मन हा पीला पड़े एक समस्या भी आ सकते। पीला पड़ा था वह तो किसान भाई मन ध्यान दी कि वह पोषक तत्व कमी हुआ था वह, या फिर जल भराव हुआ था वह। तो जल भराव मत हुआ, जल निकास के पर्याप्त सुविधा रखे, पोषक तत्व उपलब्ध करावा। तीसरा आ सकते पौधा कमजोर पड़ जाते। तो कमजोर हबे तो एकर किसान भाई ध्यान देवे कि पर्याप्त धूप रहे।
3: हाँ।
4: दूरी एक रहे, निश्चित दूरी में एकदम पास पास में मत लगावे ताकि पौधा के संपूर्ण विकास हो सके।
3: अच्छा।
4: खरपतवार वगैरह भी किसान भाई ला जो है निकाल देना चाहिए। तीसरा जो है कीड़ा वगैरह आते शुरुआती स्टेज में, एफिड है, थ्रिप्स है, इस टाइप के कीड़ा आते। तो एकर कंट्रोल बर किसान भाई मन है नीम आधारित तेल।
3: अच्छा।
4: नीम आधारित जो इंसेक्टिसाइड है।
3: हाँ।
4: एकर उपयोग करें, या फिर हमन जो प्राकृतिक खेती की बात करथन ओकर अंतर्गत घर में ही नीमास्त्र एक बनवाथन, जेमा कुछ नहीं लगे।
3: हाँ।
4: नीम के पत्ती बस कूट पीस के तैयार कर देना है।
3: हाँ।
4: और 100 लीटर के पानी में।
3: हाँ।
4: एमा गोबर और गौमूत्र 5 लीटर, 1 किलो गोबर।
3: हाँ।
4: और एला जो है 48 घंटा रख देना है।
3: अच्छा।
4: एकर से जो है घर में ही नीमास्त्र करके तैयार हो जाते हैं, और जितना चूसने वाला कीड़ा है।
3: हाँ।
4: एफिड और थ्रिप्स वगैरह, भूरा माहू, ये सब के लिए हर बहुत अच्छा कारगर रहे थे।
3: अच्छा।
4: और एकर अलावा रूट रॉट जड़ सड़न करके समस्या आ सकते। तो एकरो बार किसान भाई मल देखना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करके ओकर बुआई करना चाहिए, जल भराव जो है मत हो।
3: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दिया डॉक्टर साहब, और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं कहता हूँ किसानवाणी में चले गए, बेरा हो गया है।
5: तो
3: आज कर किसानवाणी में पत्र।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीं
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो कृष्ण भाई अब होगी सब मेरा चौपाल ले भी विदा लेंगे
2: तो आए चलिए
0: राम राम
2: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया आधारित आप सभी श्रोता

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी रितिका का प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर एवं उदित नारायण की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चित्रंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी, भास्कर, कविता मांझी, श्वेता, कुलदीप एवं सुचि कश्यप। चनौर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम, श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा एवं साथी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति एवं शिवांश वर्मा, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम एवं कुसुम नेताम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं फिल्म 1920 एविल रिटर्न फिल्म से ये गीत। आवाज़ है महालक्ष्मी की, संगीत निर्देशन है चिरंतन भट्ट का और गीतकार हैं शकील आजमी।

फिल्म 1920 एविल रिटर्न का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान एवं डग्गू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार एवं हैप्पी राय। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा एवं अलका मिड्ढा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली एवं आरती अरोड़ा। मेरठ से अंजलि जैन, संयम जैन एवं जिव्यम जैन। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार एवं नरगुस। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, किट्टू। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले एवं वसुधा वज्रसेन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर एवं उदित नारायण की। संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शीता शांति देवी, लीलावती, विनीता एवं रुद्र वर्मा, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजाल, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर एवं मनु, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से।

फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल एवं नफीसा परवीन। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा। सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश एवं जगताप। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सूरज सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि एवं ऐश्वर्या पैकरा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी एवं ओम कुमार सुरलकर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू ईशु, सपना शिवी, सलोनी अनय एवं अनाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत। आवाज़ है कुमार सानू एवं अलका याग्निक की। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती जानवी वैष्णवी एवं हर्षल रंभाडे, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी एवं दिशा गोस्वामी, ग्राम पंचायत सिरकुतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, अमित कुमार, अभिजीत गोविंद, तरुण सकल राम, प्रियांशु राजकुमारी, नेहा नायरा समायरा खुशी, सौम्या उमेश्वरी मुन्नीबाई, सोनामती माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े एवं परिवार के सभी सदस्य, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, ग्राम सिद्धमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका शिवांश राम भरोसे पैकरा, नरेश सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य, मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश एवं माहिर नेताम, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत, राम खिलावन एवं राम खिलावन सिंह पैकरा, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश शारदा सीताराम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता एवं आरती मरकाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं आजा नचले फिल्म का ये गीत। आवाज़ है सोनू निगम एवं श्रेया घोषाल की, संगीत निर्देशन है सलीम मर्चेंट का और गीतकार हैं पीयूष मिश्रा।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आजा नचले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही एवं प्रियांशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से अंजलि केवट, रुद्राणी, कृष्णा, चंचल एवं जयमंत्री केवट। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे एवं मोहम्मद हसनैन पवार। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से राम रतन साहू, मनोज कुमार, संतोष कुमार तोंडे, हेमंत दास, घनश्याम देवांगन, मनोज कुमार, जैन राम लाल साहू, देवेंद्र विश्वकर्मा, नरेश कुमार, दिलीप कुमार, माला पांडे, ममता ठाकुर एवं सावित्री निषाद। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर एवं जस्सी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं क्रिएचर 3D फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन एवं गीतकार हैं टोनी कक्कड़।

क्रिएचर 3D फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप एवं अशोक येले, बटीडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित एवं तानिया नारंग, ग्राम चरौदाबार नवापारा जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला, खुशबू एवं ज्योति ठाकुर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि एवं रोशनी,

जिला बलौदा से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय तुषार डॉली, पूजा तामुरिया एवं कबीर। बोईसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बाबली एवं प्रियांशु साहू। सब्जी मंडी बुलडाना शब्बीर से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा एवं आयजा अनम। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ एवं चंद्रकला रेवाड़। पटेल नगर मलौट से रामेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जजौरिया एवं गुड्डू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत एवं गुरशब्द सिंह। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा एवं पूजा परिहार। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ एवं निलोफर फातिमा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके एवं उत्तम जमदाड़े। भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा, आरती एवं सुनीता देवी। इसी के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश समाप्त हुआ। कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए इजाज़त।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या एवं इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने,

0: वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय

0: थानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फलस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फलस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि

0: भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है, वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज, एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world.

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म का ये गीत। आवाज है बॉम्बे जयश्री की, संगीत निर्देशन है हरीश जयराज का और गीतकार हैं समीर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं अगला गीत यलगार फिल्म से। आवाज़ है उदित नारायण एवं सपना मुखर्जी की। संगीत निर्देशन है छन्नी सिंह का और गीतकार हैं सुदर्शन फकीर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं अशोका फिल्म का ये गीत KS चित्रा एवं साथियों की आवाज में। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं गुलजार।

0: के एस चित्रा एवं साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अशोका फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: Spotlight.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रियंका जी।
1: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
2: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रहा। डीजीएसएनडी एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद कर

0: के और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
1: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का वो लेकर आया है।
0: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है। तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
1: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जेम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जेम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
0: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जेम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहाँ पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका GSTN है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं। तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
1: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जेम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसाय, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
0: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
1: जी, तो जो जेम है MSME के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, SC ST उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है। एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही है। जो स्टार्टअप है जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली MCD के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी, उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला

0: तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं, स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही, ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास, तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है, तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है, तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके

0: बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है, उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे
1: जी।
0: और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट
1: जी,
0: उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहे।
1: बिल्कुल। और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है। और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रितिका का प्यार भरा नमस्कार। चलिए रुख करते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाज़ है कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

कुमार सानू की आवाज़ में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, शबीना खत्री, मोहम्मद जैद, मुनीरा एवं मोहम्मद इकबाल।

ला दीपक एवं स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल एवं आर्या जायसवाल, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति एवं डिकेश साहू, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी एवं कृष्णा केवट, मुर्तजापुर महाराष्ट्र से हारून शाह एवं शाजिया बानो, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार एवं हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय एवं प्रांजल राय, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार एवं नरगिस, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, स्वाति, सविता, महेश कुमार, संध्या, माही, पूजा छुटकी एवं शरद कुमार डोडवा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं दुश्मन फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर एवं कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

लता मंगेशकर एवं कुमार सानू की आवाज़ में दुश्मन फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत नाचानी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार एवं सोनम वर्मा, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति एवं छाया बंछोर, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया एवं रीटा भाटिया, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे एवं महराज जहां, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती एवं हिमांशु गोदारा, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा वंडलकर, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा एवं शरीफ नवाज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू एवं डब्बू, कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी एवं दीक्षांत मिरी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत शापित फिल्म से, आवाज़ है आदित्य नारायण एवं सुजैन डी मेलो से, माफ़ कीजिएगा, आवाज़ है आदित्य नारायण एवं सुजैन डी मेलो की, संगीत निर्देशन है चिरंतन भट्ट का और गीतकार हैं समीर।

शापित फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद एवं लखन लाल देवांगन, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत जीत एवं पुष्पांजलि वर्मा, ग्राम धोराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार नवीन कुमार एवं युवराज साहू, दिल्ली से स्वीटी एवं प्रतिभा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति एवं ओजस्वी यादव, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना दानिश एवं आसिफ शेख, ग्राम चौरादाबार नवापारा जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमीला खुशबू एवं ज्योति ठाकुर, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहारकर नर्मदा एवं कुमारी सुजाता पोहारकर, दतरेंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा एवं

अमरुद वर्मा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक एवं बलवीर सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं यारियां फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद इरफान एवं गजेंद्र वर्मा की। संगीत निर्देशन एवं गीतकार हैं मिथुन।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अभी आप सुन रहे थे यारिया फिल्म का ये गीत मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता पाकुड़ झारखंड।

से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु, तासु, अर्णव आनंद एवं सत्यम, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत एवं गुड्डी भगत, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, पूजा राधिका, प्रभा देवी एवं कबीर, बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा एवं आशा सारवा, डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका अनिष्का एवं तन्मय गजभिये, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीन नौरीन आसना एवं मोहम्मद कैफ अंसारी, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री एवं यज्ञेश घोटके। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त हुआ। अब कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। गैम्बलर फिल्म से लिया गया है ये। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, संगीत निर्देशन है SD बर्मन का और गीतकार हैं नीरज।

कार्यक्रम मन भवन में अभी आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनस खत्री, शफ़ी, इंद्रिस, नूर मोहम्मद, कासिफ, हासिम, इरफान, मीना एवं परिवार के सभी सदस्य, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबिता, निखिल, अंकित, मोनी एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से ही राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, पप्पू, हेमलता, पूजा, सीता, प्रभा, सविता, सागर, आयुषी एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम मुथली पोस्ट थाना चांदनी बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण, गोलू, टीपू, दीपू, ललित, सतीश, संदीप, प्रदीप, राम सेवक, श्याम, कार्तिक, सुरेश, अरविंद, रेणु, चंदा, रीना, हीना एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जीवा फिल्म से। आवाज़ है आशा भोसले एवं अमित कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी वर्मन का और गीतकार हैं गुलजार।

आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में जीवा फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता। वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा बबिता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी ललिता खर्चे गणेश कार्तिक नारायण खर्चे। ग्राम बंगला मटिया बलौदा से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्र्यंबिका लीना अंशुमाला एवं आशुतोष अंगारे। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले। औरंगाबाद से राजेश साबेल पाटिल शीतल राजेश राजदीप राजेश एवं राशि राजेश। इस्लामापुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खत्री एवं मंतशा। बेमित्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू भावना नीलेश कुमार श्रद्धा एवं परिवार के सभी सदस्य। अराड़ नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश एवं परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जतैग विरक एवं परिवार के सभी सदस्य। फरसागांव बस्तर से हरीश साहू भावेश रूपेश एवं आकांक्षा साहू। डबरीपारा तीव्रता से गजेंद्र प्रताप मरकाम सुरेंद्र मोहन जया जागेंद्र मनमोहन एवं परिवार के सभी सदस्य। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म घर से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं गुलजार।

घर फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया एवं परिवार के सभी सदस्य, वसुंधरा विहार गोधनपुर से जयेश प्रसाद शुक्ल एवं परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य, फुटानी चौक नारायण स्टेट से फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या एवं ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नारायण बाजार से बीके मिश्रा, लल्लू पंडित एवं विनय सुर गनेया। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, घरौंदा फिल्म से आवाज़ है रूना लैला की, संगीत निर्देशन है जयदेव का और गीतकार हैं नक्श लैलापुरी।

कार्यक्रम मन भावन की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अभी आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज में घरौंदा फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नयनदास दीवान, शीला, ओम प्रकाश, रूपमणि, जयप्रकाश, सिद्धांत, शौर्य एवं परिवार के सभी सदस्य, पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप एवं आरजू, जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला एवं गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद रानी, महिमा एवं नीतू वैद, रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी एवं परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी, वैभव कान्हा एवं शिवम वैष्णव, सोनाडी से शुभ्र चौधरी एवं अनीशा, भाटापारा से मोतीलाल यादव, बसंत भृगु एवं विनय ठाकुर।

बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी, तृप्तेश एवं परिवार के सभी सदस्य। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, अंजलि एवं परिवार के सभी सदस्य। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से अनीता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज एवं परिवार के सभी सदस्य। गांधीबाग नागपुर से अशोक मीनाक्षी, सावलानी, सारंग एवं भावना। इसी के साथ कार्यक्रम मन भावन समाप्त हुआ। अब मुझे यानी ऋतिका को दीजिए इजाज़त।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी

0: लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।